0: পশ্চিমবঙ্গের উপকূলবর্তী অঞ্চলে সমুদ্র অথবা নদীতে যারা মাছ ধরতে যান তাদের উদ্দেশ্যে কোনো সতর্কবার্তা নেই বলে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে। আকাশবাণী কলকাতা, সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে সকাল ছটায়, সংবাদ দিল্লি কেন্দ্র থেকে। গীতাঞ্জলি প্রচার তরঙ্গের পরবর্তী ঘোষণা একটু পরেই শুনতে পাবেন।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে মনোজ। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी। डॉ. जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देशों, 10 साझेदार देशों, 4 क्षेत्रीय संगठनों और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधि मंडल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डॉ. जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना है कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है। अमेरिका के एक विश्लेषक ने नई दिल्ली में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को बहुत सफल बताया है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र अलग अलग विचारों वाले देशों के बीच आम सहमति बनाने की भारत की क्षमता को दर्शाता है। अटलांटिक काउंसिल में दक्षिण एशिया मामलों के वरिष्ठ फेलो माइकल कुगलमैन ने कहा कि यह घोषणा पत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता और ब्रिक्स की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है। प्रतिष्ठित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 आज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में शुरू होने जा रहा है। दक्षिण एशिया में पहली बार आयोजित हो रहे इस सम्मेलन का संयुक्त उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल करेंगे। भारत ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को इस वर्ष 31 दिसंबर तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दे दी है। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि मुजफ्फरपुर ढाल के बार लाइन के जरिए 600 मेगावाट तक और टनकपुर महेंद्र नगर लाइन के जरिए 54 मेगावाट विद्युत आपूर्ति की स्वीकृति दी गई है।
2: हाल ही में बाढ़ से नेपाल में जल विद्युत अवसंरचना को काफी नुकसान हुआ है, जिससे उसकी घरेलू बिजली निर्माण क्षमता कम हो गई है और बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता हो गई है। सोमवार से मिली मंजूरी से नेपाल को मुश्किल समय में बिजली की जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी और भारत और नेपाल के बीच गरीबी और लंबे समय से चले आ रहे ऊर्जा सहयोग को और मजबूत करने में सहायता मिलेगी। मंत्रालय ने कहा है कि भारत नेपाल की सहायता करने और ऊर्जा क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को नई दिल्ली के यशो भूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। ये वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर प्रदेश की जनता का आभार

श्री राम ने भरत को कर्तव्य तथा धर्म पालन के लिए कई प्रकार से उपदेश देकर आश्वस्त किया। कहा, गुरु की कृपा सूर्य कुल की रक्षा करने में उनकी सहायक होगी। गुरु का अनुग्रह वन में स्वयं उनका भी रक्षक होगा। साधक को आज्ञा पालन रूपी साधना से ही सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। श्री राम की स्नेह सिक्त वाणी सुनकर भरत को परम संतोष हुआ। स्वामी के अनुकूल होते ही उनका दुख, दोष बोध, विषाद सभी मिट गए। वचन मात्र से उन्हें श्री राम के साथ वन प्रवास तथा जगत में जन्म लेने का लाभ प्राप्त हो गया। 14 वर्षों की लंबी अवधि बिताने के लिए कोई अवलंब तो चाहिए ही, और फिर श्री राम के राजतिलक के लिए सभी तीर्थों का जल ले आए थे, उसका क्या करना है? इस संबंध में भी स्वामी की आज्ञा अपेक्षित है। मन में ये भी अभिलाषा है कि चित्रकूट के सभी पवित्र स्थल, वन, पशु पक्षी, नदी सरोवर, निर्झर और पर्वत समूह सबका दर्शन कर लें, विशेष रूप से उन स्थलों का जो श्री राम चरणों से अंकित हैं। मंगलमूल भरत तथा श्री राम का संवाद सुनकर देवगण धरती पर कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा करने लगे।

0: निगदितं यत् ईरानीय ड्रोन् इत्यनेन एव अस्य पोतस्य उपरि आक्रमणं विहितम्। नेपालस्य विद्युत् संकटम् अपाकर्तुं भारत सर्वकारः अग्रे आगतः। भारतेन दिसंबर मासस्य 31 दिनांकं यावत् प्रतिदिनं विद्युत् निर्यातम् अन्वामोदी। नेपाले आप्लावेन जलविद्युत् परियोजनाः विनष्टाः सञ्जाताः। प्रकृतिकोपस्य संकेतं ददत् भारतीय ऋतुविज्ञान विभागः प्रत्यपादयत् यत् अद्य दिल्ली हरियाणा असम प्रभृति राज्येषु अतिवृष्टिः भविष्यति। विभागेन अनेन प्रतिपादितं यत् दक्षिण भारते अपि अतिवृष्टिः भविष्यति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। सरकार ने कहा है कि बैंक ₹2000 तक के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई लेन देन और रूपे डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई भी शुल्क नहीं लगा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने यूपीआई लेन देन पर शुल्क से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत इन बदलावों को अधिसूचित किया है। ये नियम ग्राहकों और छोटे व्यापारियों दोनों पर समान रूप से लागू होगा। मंत्रालय ने कहा है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में किए जाने वाले यूपीआई लेन देन पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। अगर भविष्य में कभी भी डिजिटल लेन देन पर कोई शुल्क जैसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाया भी गया तो वे केवल दुकानदारों पर लगेगा, ग्राहकों पर नहीं। हालांकि ये शुल्क भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड लेन देन पर लागू MDR से काफी कम होंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। अमेरिका के एक विश्लेषक ने भारत की अध्यक्षता में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सफल बताया है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र अलग अलग विचारों वाले देशों के बीच आम सहमति बनाने की भारत की क्षमता को दर्शाता है। एटलांटिक काउंसिल में दक्षिण एशिया मामलों के वरिष्ठ फेलो माइकल कुगलमैन ने कहा कि ये घोषणा पत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता और ब्रिक्स की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है। भारत ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को इस वर्ष 31 दिसंबर तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दे दी है। विद्युत मंत्रालय ने बताया है कि मुजफ्फरपुर ढालकेबार लाइन के जरिए 600 मेगावाट तक और टकनपुर महेंद्रनगर लाइन के जरिए 54 मेगावाट विद्युत आपूर्ति की स्वीकृति दी गई है।
2: हाल ही में बाढ़ से नेपाल में जलविद्युत अवसंरचना को काफी नुकसान हुआ है, जिससे उसकी घरेलू बिजली निर्माण क्षमता कम हो गई है और बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता हो गई है। सोमवार से मिली मंजूरी से नेपाल को मुश्किल समय में बिजली की जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी और भारत और नेपाल के बीच गरीबी और लंबे समय से चले आ रहे ऊर्जा सहयोग को और मजबूत करने में सहायता मिलेगी। मंत्रालय ने कहा है कि भारत नेपाल की सहायता करने और ऊर्जा क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। सकलीन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
1: प्रतिष्ठित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 आज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में शुरू होने जा रहा है। दक्षिण एशिया में पहली बार आयोजित हो रहे सम्मेलन का संयुक्त उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल करेंगे। सम्मेलन का विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था, जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। इसमें 65 से अधिक देशों के 2000 से अधिक हितधारक भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान के लोगों ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वे डबल इंजन सरकार के अंतर्गत सुशासन और विकास की नीतियों का पूरा समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी बृहस्पतिवार को नई दिल्ली के यशो भूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सरकार ने कहा 2000 रुपए तक के यूपीआई भुगतान पर बैंक कोई शुल्क नहीं लेंगे। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 का आज से गुजरात के गांधीनगर में शुभारंभ। भारत और कनाडा के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर अगले दौर की बातचीत शुरू। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र को मजबूत और कारगर बताया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज शाम दिल्ली में। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने कहा है कि बैंक 2000 रुपए तक के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI लेन देन और रूपे डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई भी शुल्क नहीं लगा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने UPI लेन देन पर शुल्क से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत इन बदलावों को अधिसूचित किया है। एक रिपोर्ट।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह नियम ग्राहकों और छोटे व्यापारियों दोनों पर समान रूप से लागू होंगे। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में किए जाने वाले UPI लेन देन पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। अगर भविष्य में कभी डिजिटल लेन देन पर कोई शुल्क जैसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाया भी गया तो वह केवल दुकानदारों पर लगेगा, ग्राहकों पर नहीं। हालांकि ये शुल्क भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड लेन देन पर लागू MDR से काफी कम होंगे। सरकार का यह स्पष्टीकरण भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में हालिया संशोधन के बाद UPI लेन देन पर शुल्क की आशंकाओं के बीच आया है। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: प्रतिष्ठित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 आज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में शुरू होने जा रहा है। दक्षिण एशिया में पहली बार आयोजित हो रहे इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल संयुक्त रूप से करेंगे। सम्मेलन का विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था, जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसमें 65 से अधिक देशों के 2000 से अधिक हितधारक भाग लेंगे।
2: दो दिवसीय वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम में विश्व भर से पर्यावरण विशेषज्ञ, नीति निर्माता, उद्योजक और शोधकर्ताओं हिस्सा ले रहे हैं। इस फोरम का मुख्य उद्देश्य पुरानी सामग्रियों और उत्पादों के पुनरुपयोग, रिसाइकलिंग और पुनर्चक्रण के माध्यम से सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। इस आयोजन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग, हरित ऊर्जा, रोजगार, वित्त और स्टार्टअप इकोसिस्टम जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर 4 प्लेनरी और 16 विषय आधारित सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो में 125 से अधिक प्रदर्शक अपने व्यावहारिक सर्कुलर समाधानों का भी प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद 17 और 18 सितंबर को दुनिया भर में 80 विशेष एक्सीलेटर सत्र आयोजित किए जाएंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: भारत और कनाडा ने प्रस्तावित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए नई दिल्ली में चौथे दौर की वार्ता शुरू कर दी है। दोनों देश वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $50 अरब तक बढ़ाने के प्रयास में हैं। 5 दिन की ये वार्ता कल से शुरू हुई जो 18 सितंबर तक चलेगी। इसमें वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, मूल स्थान के नियम तथा तकनीकी व्यापार बाधाओं सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। एक रिपोर्ट।
3: दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024-25 में $8.66 अरब से घटकर वर्ष 2025-26 में $7.95 अरब रह गया, जो 8.22% कम है। भारत से कनाडा को प्रमुख निर्यात में दवाइयां, लोहा और इस्पात, समुद्री खाद्य, सूती परिधान, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन शामिल हैं, जबकि कनाडा से भारत के प्रमुख आयात में दालें, मोती और अर्धकीमती पत्थर, कोयला, उर्वरक, कागज और कच्चा तेल शामिल है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उरुग्वे के विदेश

0: मंत्री मारियो लुबेतकिन ने भारत और दक्षिण अमरीका के प्रमुख व्यापार समूह मरकोसुर के बीच तरजीही व्यापार समझौते के विस्तार के लिए बातचीत शुरू करने की घोषणा की है। दोनों मंत्रियों ने वर्तमान समझौते में आपसी हित के क्षेत्रों को शामिल करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र को सुदृढ़, सक्रिय, समयबद्ध और बेहद कारगर बताया है। कल नई दिल्ली में राम जेठमलानी स्मृति व्याख्यान के 6th संस्करण में उन्होंने ये बात कही।
3: Given a choice, a judicial officer,
4: अगर किसी न्यायिक अधिकारी को अंतरिम आदेश देने पर, मामले की सुनवाई टालने पर या अंतिम आदेश पारित करने पर शिकायत का सामना करना पड़े तो हर चरण में उसके खिलाफ शिकायत आ सकती है। यह गंभीर बहस का विषय है कि क्या ऐसी हर शिकायत को किसी सार्वजनिक मंच या वेबसाइट पर रखा जाना चाहिए या फिर इसके लिए न्यायपालिका के भीतर ही एक मजबूत व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था में पूरी निष्पक्षता और बिना किसी पूर्वाग्रह के शिकायतों पर विचार किया जाना चाहिए।
3: इन अ वेरी रिस्पॉन्सिबल मैनर मस्ट डील विद इट।
0: मुख्य न्यायाधीश ने न्यायपालिका में निरंतर सुधार और अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। ये वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान के लोगों ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वे डबल इंजन सरकार के अंतर्गत सुशासन और विकास की नीतियों का पूरा समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोगों के बीच प्रेम और सद्भावना बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिनसे हृदय में प्रेम, सौहार्द और सद्भावना का विकास हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। दिशा सालियान की 8 जून 2020 को एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद यह प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, उनके सुरक्षाकर्मी डिनो मौर्या, रोहन रॉय, सूरज पंचोली, रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती और पुलिस अधिकारियों सचिन वाजे तथा परमबीर सिंह सहित कई लोगों के नाम हैं। झारखंड में CID ने झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मामले में एक कोचिंग सेंटर संचालक संजीत कुमार को गिरफ्तार किया है। रांची के रातू रोड इलाके में शिवांगन कोचिंग सेंटर चलाने वाले संजीत कुमार पर आरोप है कि उसने एजेंट के तौर पर उम्मीदवारों से परीक्षा पास कराने का वायदा कर पैसे वसूले थे। पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर गहरा गया है। यमन के ईरान समर्थित हाउसी विद्रोहियों ने दक्षिणी सऊदी अरब के एक सैन्य हवाई अड्डे पर कई मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। सऊदी गठबंधन के अनुसार इस हमले में 13 नागरिक घायल हुए हैं, जिसके बाद 4 पड़ोसी शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दूसरी तरफ हाउसी विद्रोहियों ने लाल सागर के पास देश के पश्चिमी तट पर अपनी

0: स्थिति मजबूत करना शुरू कर दिया है। इस बढ़ते तनाव के कारण खाड़ी देशों ने ईरान के साथ होने वाली बातचीत को फिलहाल टाल दिया है। जानकारों का मानना है कि यदि ये टकराव और बढ़ा तो लाल सागर के रास्ते होने वाली दुनिया की तेल आपूर्ति बड़ी मुसीबत में पड़ सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन एक दूसरे के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने पर सहमत हो गए हैं। हालांकि उन्होंने इसे लागू कराने से जुड़ी जानकारी नहीं दी। सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन रूस के ऊर्जा ठिकानों पर हमला नहीं करने और रूस भी ऐसा ही करने पर सहमत हुआ है। हालांकि पोस्ट में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किन ऊर्जा प्रतिष्ठानों को इस समझौते के दायरे में रखा जाएगा या क्या दोनों पक्षों ने कोई शर्त रखी है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों से पहले डाक से मतदान प्रतिबंधित करने की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना को खारिज कर दिया है। न्यायाधीशों ने संघीय न्यायाधीश के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें डाक सेवा को डाक मतपत्रों से जुड़े नए नियमों को लागू करने से अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। न्यायाधीश सैमुअल एलिटो और क्लेरेंस थॉमस ने संक्षिप्त आदेश से असहमति जताई। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी दिन भर ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान में बिजली चमकने की आशंका है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। तीसरा और अंतिम मुकाबला दिल्ली में ही बृहस्पतिवार को होगा। भारत ने पहले T20 मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। एशियाई ट्रैप चैंपियन निशानेबाज सबीरा हारिस के नेतृत्व में 20 सदस्यीय भारतीय दल आज से इटली में ISSF जूनियर विश्व कप शॉटगन में भाग लेगा। प्रतियोगिता का समापन 19 सितंबर को होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRnews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद प्रियंका। आज अधिकांश अखबारों ने रक्षा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट को प्रमुखता से दिया है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीन ने घटाई सैन्य तैनाती, देश फिर से चौकस। दैनिक भास्कर ने लिखा है, रिपोर्ट में तकनीकी बदलाव का रोड मैप बताया गया। ऑपरेशन सिंदूर से सबक, ड्रोन के 9 फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट शुरू होंगे। अमर उजाला ने भारत चीन में भरोसा और बढ़ा शीर्षक से चीन के विदेश मंत्री का बयान दिया है, सुधार और नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहे रिश्ते। नव भारत टाइम्स की खबर है, साइबर ठगी के आरोप पर बैंक खाते से लेन देन पर 60 दिन तक लग सकेगी रोक, RBI ला रहा नियम। हिंदुस्तान के आर्थिक पन्ने की खबर है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने करोड़ों अंशधारकों को दी बड़ी राहत, PF की सूचनाएं अब WhatsApp पर मिलेंगी। EPFO पोर्टल या उमंग ऐप पर बार बार लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को आसान हिंदी में समझ सकेंगे लोग, कल हिंदी दिवस पर न्यायालय की नई पहल को दैनिक जागरण सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। लोक सत्य ने लिखा है, जन सूचना सेवा में सरल हिंदी सारांश के साथ ऑडियो वीडियो बुलेटिन भी मिलेंगे। जनसत्ता की यह खबर ध्यान खींचती है, लंदन में टेम्स नदी के तट पर पहली बार हुई गंगा आरती, हजारों लोग शामिल हुए, वाराणसी के घाटों जैसी दिखी झलक।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, सरकार ने कहा ₹2000 तक के UPI भुगतान पर बैंक कोई शुल्क नहीं लेंगे। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 का आज से गुजरात के गांधीनगर में शुभारंभ। भारत और कनाडा के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर अगले दौर की बातचीत शुरू। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र को मजबूत और कारगर बताया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा टी20 क्रिकेट

नमस्कार दोस्तों, मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी कोलकाता का चैनल संचेता। स्टूडियो की घड़ी में समय हो गया है 9:10 एग्जैक्टली और मैं पापिया हाजिर हो गई हूँ लेकर हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसधारा। और आज की हमारी ये संगीत यात्रा थोड़ी सी विशेष है क्योंकि आज से ठीक 67 वर्ष पहले 15 सितंबर 1959 को भारत में टेलीविजन प्रसारण की एक छोटी सी शुरुआत हुई थी। नाम था दूरदर्शन।

दोस्तों, उस समय शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि दिल्ली के एक छोटे से प्रयोग से शुरू होने वाली ये यात्रा एक दिन भारत के करोड़ों घरों तक पहुंचेगी। फिर एक ऐसा समय आएगा जब टेलीविजन की दुनिया से आगे बढ़कर गीत हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर, हमारी जेब में और हमारी उंगलियों से हल्की सी छुअन पर उपलब्ध होंगे। आज की रसधारा में हम इसी सफर को संगीत के साथ महसूस करेंगे, दूरदर्शन से डिजिटल युग तक। लेकिन शुरुआत उस समय से करते हैं जब घर में टेलीविजन होना अपने आप में एक बड़ी बात हुआ करती थी। 15 सितंबर 1959 को दिल्ली में दूरदर्शन की प्रायोगिक सेवा शुरू हुई। एक छोटा सा स्टूडियो, सीमित संसाधन और एक छोटा ट्रांसमीटर, लेकिन सपना बहुत बड़ा था, भारत के लोगों तक शिक्षा, सूचना और मनोरंजन पहुंचाने का। 1965 में दूरदर्शन की नियमित सेवा के रूप में प्रसारण शुरू किया और धीरे धीरे उसका विस्तार दिल्ली से बाहर भी होने लगा। 1972 में मुंबई और अमृतसर तक सेवा पहुंची और उसके बाद देश के दूसरे शहर भी इस प्रसारण नेटवर्क से जुड़ते रहे। लेकिन उस समय का भारत आज के भारत से बिल्कुल अलग था। एक घर में एक टेलीविजन और देखने वाले पूरे परिवार के लोग, और जो चैनल बदलने की जल्दी नहीं, कोई सैकड़ों विकल्प नहीं, और न ही सुविधा की मन हुआ तो किसी भी समय अपना पसंदीदा गीत चला लिया जाए। जो कार्यक्रम तय समय पर आता उसी समय बैठना पड़ता था। सिनेमा के गीत अब केवल सिनेमा घर में नहीं दिखाई देते, फिर टेलीविजन के रास्ते घर तक बैठक खाने तक आने लगे। और इस बदलाव में चित्रहार की भूमिका ने भला कौन भूल सकता है। 1982 में दूरदर्शन पर शुरू हुआ चित्रहार हिंदी फिल्मों के गीतों के दृश्य घर घर लेकर आया। चित्रहार यानी चित्रों की माला, और सचमुच अलग अलग फिल्मों के गीतों को एक के बाद एक पिरो कर यह कार्यक्रम भारतीय दर्शकों की फिल्मी संगीत की एक नई खिड़की बन गई। उस समय किसी फिल्म का नया गीत देखने के लिए मोबाइल नहीं, इंटरनेट नहीं, और या फिर कोई भी सोशल मीडिया नहीं। अगर आपका पसंदीदा गीत चित्रहार में आने वाला हो तो उस समय आपको टेलीविजन के सामने मौजूद रहना ही पड़ता था। और उस दूर की खूबसूरती और इसी याद के साथ सुनते हैं हमारा अगला गीत।

कितना बदल गया है हमारे सुनने और देखने का संसार। आज किसी गीत के लिए पूरा सप्ताह इंतजार नहीं करना पड़ता, लेकिन कभी कभी सोचिए क्या उस इंतजार में कोई संगीत था। बुधवार या शुक्रवार को चित्रहार का इंतजार, रविवार की सुबह रंगोली का इंतजार, और फिर गीत शुरू होते ही घर में अचानक सबका ध्यान टेलीविजन की ओर चला जाना। रंगोली भी दूरदर्शन के उन लोकप्रिय संगीत कार्यक्रमों में रहा जिसने हिंदी फिल्मी गीतों को रविवार की सुबह का हिस्सा बना दिया। यानी संगीत सिर्फ सुना नहीं जाता था, संगीत के लिए समय निकाला जाता था। आज हम संगीत को अपने समय के हिसाब से चलाते हैं, तब समय संगीत के हिसाब से तय होता था, और यही अंतर हमें उस पुराने दौर की याद दिलाता है। दोस्तों, दूरदर्शन का महत्व सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं था, यह भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का हिस्सा भी बन चुका। 1975 में सैटेलाइट ट्रांजैक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट यानी साइट के माध्यम से उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल करके 6 राज्यों के लगभग 2400 गांव तक शैक्षिक और विकासपरक प्रसारण पहुंचाने का प्रयास किया गया। सोचिए, एक तरफ गांवों तक शिक्षा और जानकारी पहुंचाने की कोशिश और दूसरी तरफ घरों में फिल्मी गीतों की महफिल। यानी दूरदर्शन ने भारत में टेलीविजन को केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं बनाया, उसने उसे सूचना, शिक्षा, संस्कृति और मनोरंजन का साझा मंच भी बनाया। फिर आया 1982 का वर्ष, भारत में रंगीन टेलीविजन का दौर तेज हुआ, और उसी वर्ष एशियाई खेलों के प्रसारण ने रंगीन टीवी को भारतीय घरों की एक नई पहचान बना दी। वही गीत, वही कलाकार, वही नृत्य, लेकिन रंगों के साथ। काले सफेद पर्दे से रंगीन पर्दे तक का ये बदलाव सिर्फ तकनीकी बदलाव नहीं था, ये देखने का अनुभव में भी बदलाव था, और बॉलीवुड भी धीरे धीरे बदल रहा था। 70 के दशक के गंभीर और भावपूर्ण गीतों के साथ अब 80 के दशक की नई धुनी, नई आवाजें और नई संगीत शैलियां लेकर आ रहा था।

और फिर भारतीय संगीत की दुनिया में एक और बड़ा परिवर्तन आया, उपग्रह चैनलों का दौर। अब केवल दूरदर्शन ही विकल्प नहीं था, संगीत चैनल आने लगे, फिल्मी गीतों के लिए अलग कार्यक्रम, अलग चैनल मिलने लगे। अब गीत केवल ये केवल चित्रहार का इंतजार नहीं करना पड़ता था, लेकिन फिर भी दूरदर्शन का अपना जादू था, क्योंकि उस समय पूरे देश के लाखों लोगों एक ही कार्यक्रम, एक ही गीत और एक ही समय पर जुड़े होते थे। आज हमारे पास विकल्प बहुत है, लेकिन साझा अनुभव कम हो गए हैं। अब एक व्यक्ति अपने मोबाइल पर गीत सुन रहा है, दूसरा किसी दूसरे मंच पर कोई और गीत, तीसरा किसी और भाषा का संगीत। संगीत की दुनिया बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन उस दौर में संगीत की दुनिया बहुत छोटी थी और शायद इसलिए उसमें अपनापन भी ज्यादा था। और फिर आया इंटरनेट, और इंटरनेट ने संगीत की पूरी तरह से बदल दिया। अब गीत सुनने के लिए किसी विशेष समय का इंतजार नहीं, किसी विशेष चैनल की जरूरत नहीं, अपने पास मोबाइल है और दुनिया भर का संगीत आपके सामने। पहले हम पूछते थे आज चित्रहार में कौन सा गाना आएगा, आज हम खोजते हैं मुझे कौन सा गाना सुनना है। ये बहुत बड़ा बदलाव है। और फिर आया स्ट्रीमिंग का दौर, अब केवल फिल्मी गीत ही नहीं, पुराने दुर्लभ गीत, लाइव प्रस्तुतियां, कवर संस्करण, रिमिक्स, स्वतंत्र कलाकार, क्षेत्रीय संगीत, सब कुछ एक ही डिजिटल दुनिया में उपलब्ध है। कभी किसी गीत को सुनने के लिए हमें उसकी फिल्म आने का इंतजार करना पड़ता था, आज कोई नया गीत रिलीज होता और कुछ ही समय में वो दुनिया भर के श्रोताओं तक पहुंच जाता। यानी 1959 में जो यात्रा एक छोटे से ट्रांसमीटर से शुरू हुई थी, वो आज मोबाइल स्क्रीन और डिजिटल नेटवर्क तक पहुंच चुकी है। दूरदर्शन स्वयं भी आज उपग्रह, ऑनलाइन और मोबाइल सेवाओं के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचता है। लेकिन इस पूरी यात्रा में एक चीज नहीं बदली, संगीत की जरूरत। माध्यम बदलता बदल रहा, रेडियो से टेलीविजन, काले सफेद से रंगीन पर्दा, दूरदर्शन से उपग्रह चैनल, कैसेट सीडी, सीडी से MP3 और फिर मोबाइल से स्ट्रीमिंग। लेकिन जब कोई धुन दिल को छूती तो आज भी हम रुककर उसे सुनते, और शायद इसी कारण पुराने गीत आज भी नए श्रोताओं तक पहुंचते।

अब रसधारा कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले एक विशेष सूचना। मुख्य पोस्टमास्टर जनरल पश्चिम बंगाल सर्किल की अध्यक्षता में दिनांक 28/10/2026 को अपराह्न 12:30 मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्कल योगायोग भवन P36 CR एवेन्यू कोलकाता 700012 में गूगल मीट वीडियो सम्मेलन के माध्यम से 138वीं डाक अदालत एवं पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी। इस अदालत में पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के डाक घरों से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगियों की डाक सेवाओं और पेंशन दावों से संबंधित शिकायतों का निपटान किया जाएगा। शिकायत पत्र में संदर्भ संख्या, विभिन्न डाक प्राधिकारियों से पूर्व में प्राप्त पत्रों की तारीख एवं शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर सहित पूर्व ब्यूरो का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। शिकायत श्री एससी दास, सहायक निदेशक डाक सेवा, ग्राहक संतुष्टि, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्कल P36 CR एवेन्यू कोलकाता 700012 के नाम से भेजी जाए और ये डाक या ईमेल आईडी cpmg_wb@indiapost.gov.in adpgcowb@gmail.com या pg.wb@indiapost.gov.in के माध्यम से दिनांक 30/9/2026 तक या इसके पूर्व पहुंच जानी चाहिए। शिकायतकर्ता से अनुरोध है कि वे उपरोक्त निर्धारित तारीख एवं समय पर गूगल मीट यानी वीडियो सम्मेलन के जरिए डाक अदालत एवं पेंशन अदालत में उपस्थित हो। किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए सहायक निदेशक डाक सेवा ग्राहक संतुष्टि से दूरभाष संख्या 0332212050, 0332212061, 0332212050 पर संपर्क किया जा सकता है। डाक

अदालत, पेंशन अदालत के आवेदनों, ईमेल पर डाक अदालत, पेंशन अदालत शब्द लिखना जरूरी है। उपयुक्त डाक एवं पेंशन अदालत में उत्तराधिकार आदि से संबंधित विधेयक मामलों पर एवं नीतिगत मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। सूचना समाप्त होती है। इसी के साथ दोस्तों चलिए रसधारा में आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं

कहते हैं अरे ये तो हमारे जमाने का गाना है। यही तो संगीत की सबसे बड़ी ताकत है, वो पीढ़ियों के बीच पुल बनना बन जाती है। आज डिजिटल युग में संगीत सुनने का तरीका और भी व्यक्तिगत हो गया है। स्ट्रीमिंग मंच हमारे पसंदीदा गीतों के आधार पर अगला गीत सुझाते हैं। अब अपनी प्लेलिस्ट बना सकते हैं, पुराने गीतों की पूरी सूची कुछ ही सेकंड में सामने आ जाती है। जिस गीत को सुनने के लिए कभी हमें किसी कार्यक्रम का इंतजार करना पड़ता था, हम उसे आधी रात को भी सुन सकते हैं। और ये बदलाव केवल श्रोताओं के लिए नहीं, नए कलाकारों के लिए भी डिजिटल दुनिया के रास्ते खोले हैं। किसी भी गायक को अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाने के लिए बड़े संगीतकार, फिल्म निर्माता या रिकॉर्ड कंपनी का सहारा चाहिए होता है। आज एक स्वतंत्र कलाकार अपना गीत डिजिटल मंच पर जारी करके दुनिया के किसी भी कोने के श्रोता तक पहुंच सकता है। ये बदलाव भारतीय संगीत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, गुवाहाटी, जयपुर, चंडीगढ़ या किसी छोटे शहर के कलाकार भी अपनी आवाज़ दुनिया तक पहुंचा सकता है। लेकिन इस डिजिटल सुविधा के बीच हम उस दौर को भूलना नहीं चाहिए जिसमें हमें संगीत से जोड़ना सिखाया। वो दौर जब पूरा परिवार एक टेलीविजन के सामने बैठता, जब चित्रहार में पसंदीदा गीत आने पर कोई उठकर कमरे से बाहर नहीं जाता, जब रंगोली की रविवार सुबह की धुन घर में माहौल का हिस्सा बन जाती और जब एक गीत सिर्फ गीत नहीं होता था, वह एक साझी स्मृति बन जाती थी। तो चलिए इस संगीत की यात्रा में हम आगे बढ़ते हुए अगला गीत सुन लेते हैं।

दोस्तों, समय बदलता है, तकनीक बदलती है, माध्यम बदलते हैं, लेकिन रस वही रहता है। 1959 में दूरदर्शन की यात्रा शुरू हुई थी, आज डिजिटल युग है, कल शायद मनोरंजन और संगीत के नए माध्यम हमारे सामने होंगे, लेकिन इंसान जब तक भावनाएं महसूस करता रहेगा तब तक गीत जिंदा रहेंगे, क्योंकि संगीत को किसी एक तकनीक की ज़रूरत नहीं होती, उसे सिर्फ एक दिल चाहिए जो उसे सुन सके। आज के हमारे इस विशेष प्रस्तुति का विषय है दूरदर्शन से डिजिटल युग तक, संगीत के बदलते सफ़र की कहानी। एक ऐसा सफ़र जिसमें हमने छोटे पर्दे से लेकर मोबाइल की स्क्रीन तक का रास्ता तय किया। दूरदर्शन ने हमें एक साथ बैठाकर देखना सिखाया, डिजिटल युग में अपनी पसंद चुनने की आज़ादी दी, लेकिन गीतों ने दोनों दौरों में हमें जोड़े रखा। तो इस खूबसूरत सफ़र को समाप्त तो भी फिलहाल नहीं करेंगे, सुनेंगे हमारा अगला गीत।

तो लग रहा है ना दोस्तों कि ये गाने सुने सुने से हैं, बिल्कुल चित्रहार और रंगोली के गानों जैसे, जब हम यही गाने, यही पुराने गाने उस वक्त सुना करते थे। तो चलिए इसी बात पर, ऐसे ही यादों को याद करते हुए अगला गाना सुन लेते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में।

तो दोस्तों, अब ये खूबसूरत जो सफर है रसधारा का, वो समाप्त हो चला है। और इस खूबसूरत सफर को समाप्त करने से पहले सुनते हैं एक ऐसा गीत जो अपने आप में एक पूरी पीढ़ी की याद दिलाती है। जी हाँ, और आप सुन रहे हैं रसधारा और मैं हूँ आपकी साथी पापी। और आज के इस संगीत यात्रा में साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले मुलाकात तक याद रखिए, तकनीक बदल सकती है, स्क्रीन बदल सकती है, सुनने का माध्यम भी बदल सकता है, लेकिन अच्छे गीत की धुन कभी पुरानी नहीं होती। और इसी के साथ मैं पापिया भी लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलूंगी किसी और दिन किसी और समय कुछ और बात और गीतों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ पर। यह है आकाशवाणी कोलकाता का चैनल संचेता। थोड़ी ही देर में अगला कार्यक्रम और मेरी मुलाकात होगी आपसे ठीक दोपहर।

0: किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार।
1: कैसे?

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। सरकार ने कहा है कि बैंक 2000 रुपए तक के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई लेनदेन और रुपे डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई भी शुल्क नहीं लगा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने यूपीआई लेनदेन पर शुल्क से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत इन बदलावों को अधिसूचित किया है। एक रिपोर्ट।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह नियम ग्राहकों और छोटे व्यापारियों दोनों पर समान रूप से लागू होंगे। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में किए जाने वाले यूपीआई लेनदेन पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। अगर भविष्य में कभी डिजिटल लेनदेन पर कोई शुल्क जैसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाया भी गया तो वह केवल दुकानदारों पर लगेगा, ग्राहकों पर नहीं। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: प्रतिष्ठित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 आज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में शुरू होने जा रहा है। दक्षिण एशिया में पहली बार आयोजित हो रहे इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल संयुक्त रूप से करेंगे। सम्मेलन का विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था, जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। भारत और कनाडा ने प्रस्तावित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए नई दिल्ली में चौथे दौर की वार्ता शुरू कर दी है। दोनों देश वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $50 अरब तक बढ़ाने के प्रयास में है। 5 दिन की ये वार्ता कल से शुरू हुई जो 18 सितंबर तक चलेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र को सुदृढ़, सक्रिय, समयबद्ध और बेहद कारगर बताया है। नई दिल्ली में कल राम जेठमलानी स्मृति व्याख्यान के 6th संस्करण में उन्होंने ये बात कही। साथ ही मुख्य न्यायाधीश ने न्यायपालिका में निरंतर सुधार और अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री बृहस्पतिवार को नई दिल्ली के यशो भूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। ये वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। झारखंड में CID ने झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मामले में एक कोचिंग सेंटर संचालक संजीत कुमार को गिरफ्तार किया है। रांची के रातू रोड इलाके में शिवांगन कोचिंग सेंटर चलाने वाले संजीत कुमार पर आरोप है कि उसने एजेंट के तौर पर उम्मीदवारों से परीक्षा पास कराने का वादा कर पैसे वसूले थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन एक दूसरे के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने पर सहमत हो गए हैं, हालांकि उन्होंने इसे लागू कराने से जुड़ी जानकारी नहीं दी। सोशल मीडिया मंच ट्रूथ सोशल पर पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन रूस के ऊर्जा ठिकानों पर हमला नहीं करने और रूस भी ऐसा ही करने पर सहमत हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कृषि आधारित लोक पर्व नुआखाई के अवसर पर देशवासियों, विशेषकर ओडिशा के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि इस पर्व से आपसी सद्भाव और सौहार्द और मजबूत होगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Government has notified rules specifying that banks and payment system providers cannot impose charges on UPI transactions of up to 2,000 rupees. The Finance Ministry issued a Gazette notification yesterday under the Payment and Settlement Systems Act 2007. It listed UPI transactions of up to 2,000 rupees and debit card payments made through RuPay as electronic payment modes for which customers cannot be charged. Chief Justice of India, Justice Suryakant, has described the mechanism developed by the Supreme Court and High Courts to address complaints against judges as robust, very responsive and timely. Delivering the keynote address at the 6th Ram Jethmalani Memorial Lecture in New Delhi, he stressed the need for continuous reform and greater transparency in the

1008 किलोहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी कोलकाता का चैनल संचेता, जिस पर आप सुन रहे हैं रोजाना उर्दू प्रोग्राम अंजुमन। अंजुमन के सफर में आज आपके साथ है आपकी मेजबान सूफिया शीरिंग। आप सबको को सूफिया का पुरखलूस आदाब। सामीन, स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 10:16:30, यानी कि यह इशारा है प्रोग्राम की पहली पेशकश आईना का। आईना से रूबरू होने से कबल आपको बता दूं कि आप ये प्रोग्राम न्यूज़ ऑन एयर ऐप के जरिए भी समाप्त फरमा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो बराह रास्त संचेता चैनल कोलकाता भी टाइप करें, और कहीं भी किसी भी जगह हो हमारे प्रोग्रामों से आप लुत्फानंदोज हो सकते हैं। चलिए अब वक्त हो गया है कि हम आईना से रूबरू हों, और आईना में आज हमारी पहली पेशकश है दूरदर्शन डे। दूरदर्शन हिंदुस्तान का कौमी टेलीविज़न नशरियाती इदारा है, जिसने मुल्क में इत्तलात, तालीम और तफरीह को घर घर पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया है। दूरदर्शन की बाकायदा नशरियात 15 सितंबर 1969 को शुरू हुई। इसी मुनासिबत से हर साल 15 सितंबर को दूरदर्शन डे मनाया जाता है।

मौसी सामीन अब चलिए सुनते हैं कविता सुब्रमण्य और उदित नारायण की आवाज़ में फिल्म देवदास का नगमा, शायरी नुसरत बद्र की और जिसे मौसीकी से सजाया है इस्माइल दरबार ने।

आप सब सुन रहे थे कविता सुब्रमण्यम और उदित नारायण की मशहूर गुनावाजों में फिल्म देवदास का नगमा। शायरी नुसरत बद्र की, जिसे मौसीकी से सजाया था इस्माइल दरबार ने। बेशक आप, हमने भी हमेशा आपको चाहा है और हमेशा कोशिश की है कि ये जो वक्त है 10:15 से लेकर 11 तक, हम आपकी तफरी का भी पूरा ख्याल रखें और साथ ही में आपको इतलात मालूमात भी दें, आप तक वो ख़बरें भी पहुंचाएं जिस तक हम चाहते हैं कि आपकी तरक्की में वो सारी ख़बरें, वो सारी मालूमात हमेशा कारामद हो, जिसके लिए हम लेकर आते हैं अक्सर ही ऐसी हुकूमत हिंद की ऐसी योजनाओं पर बातें, गुफ्तगु, कुछ मख्तसर सी तफसीलात, ताकि आप उन योजनाओं से फ़ायदा हासिल करें और मेन स्ट्रीम में, ख़ासकर जो हमारी माइनॉरिटी है ना, वो माइनॉरिटीज जो है मेजोरिटी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले और मुल्क जो है ना विकास की तरफ बस आगे ही आगे बढ़ता जाए। तो हमारी इस छोटी सी कोशिश का ये हिस्सा होता है ना। आज के दिन हम बात करते हैं मंजरनामा पर, हकूमती स्कीमों पर, जिस पर आज हम बात कर रहे हैं पीएम स्वनिधि योजना पर। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की स्कीम पीएम स्वनिधि अब सिर्फ छोटे कर्ज की स्कीम नहीं रही है, बल्कि शहरी खवांचा फरोशों और छोटे कारोबारी अफराद को माली तौर पर खुद कफील बनाने की एक अहम हुकूमती कोशिश बन चुकी है। जून 2020 में शुरू की गई इस स्कीम का मकसद कोरोना वबा से मुतासिर होने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को दोबारा कारोबार शुरू करने के लिए बग़ैर जमानत वर्किंग कैपिटल कर्ज फ्राहम करना था। वक्त के साथ इसमें डिजिटल अदायगी, क्रेडिट सहूलत और समाजी तहफ़ को भी शामिल किया गया। अब बताती हूँ थोड़ी सी पीएम स्वनिधि की ताज़ा तरीन सूरत हाल। सबसे अहम तब्दीली यह है कि मरकजी हुकूमत ने 2025 में इस स्कीम को अज़सर नौ मुनासिम करते हुए कर्ज देने की मुद्दत 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दी है। इसके लिए तकरीबन 7,332 करोड़ का मजमू मालियाती इंतजाम किया गया है। नई शक्ल में तकरीबन 1.15 करोड़ अफराद को फ़ायदा पहुँचाने का हदफ है, जिनमें तकरीबन 50 लाख नए मुस्तफीदीन शामिल हैं। अब कर्ज 3 मरहलों में दस्तियाब है। पहले मरहले में 15,000 तक, दूसरे मरहले में 25,000 तक और तीसरे मरहले में 50,000 तक कर्ज हासिल किया जा सकता है। अगले मरहले का कर्ज अमूमन पिछले कर्ज के बदबरख्त अदायगी से मुंसलिक है। कर्ज के साथ सूद में रियायत और क्रेडिट गारंटी की सहूलत भी मौजूद है। इस स्कीम की एक अहम नई सहूलत UPI से मुंसलिक रुपए क्रेडिट कार्ड है। दूसरे मरहले का कर्ज पर वक्त वापस करने वाले अहल वेंडर को तक 30,000 तक की क्रेडिट हद वाला कार्ड मिल सकता है, जिससे कारोबारी जरूरियात के लिए फौरी माली सहूलियात हासिल की जा सकती हैं। डिजिटल लेन देन को फरोख देने के लिए वेंडर्स को कैश बैक की सहूलत भी दी जा रही है। इसके अलावा स्कीम को सेंसस टाउन अब्बास प्री और बड़े इलाकों तक वसी किया गया है, जिससे पहले के मुकाबले में ज़्यादा छोटे कारोबारी अफराद इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। सरकारी पीएम स्वनिधि पोर्टल के मुताबिक अब वेंडर अपनी ULB तफसीलात भी मुंतकिल होने की सूरत में अपडेट कर सकता है। इस स्कीम का असर इसके इदाद व शुमार से भी जाहिर होता है। मई 2026 तक 75 लाख से ज़्यादा मुस्तफीदीन को 1.12 करोड़ तक से ज़्यादा कर्ज दिए जा चुके हैं, जिनकी मजमू मालियत 17,800 करोड़ से ज़्यादा थी। पीएम स्वनिधि का मकसद सिर्फ कर्ज देना नहीं, बल्कि सड़क किनारे दुकान, रेहड़ी, ठेला या छोटा कारोबार करने वालों को बैंकिंग निज़ाम से जोड़ना, डिजिटल अदायगी के आदत पैदा करना, कारोबार बढ़ाने का मौका देना और इन्हें खुद कफील बनाना है। 2030 तक इस स्कीम की तौसी से लाखों छोटे कारोबारी अफराद के लिए रस्मी कर्ज और माली शमूलियत के नई राहें, नए रास्ते खुलने की पूरी उम्मीद है।

और उम्मीद के साथ अगर कोशिश भी हो तो उम्मीद ज़रूर कामयाब होती है। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि अगर आप इन तमाम सरकारी स्कीमों से फ़ायदा उठाएंगे ना और मेहनत करेंगे, लगन से काम लेंगे और वक्त पर अपने कर्ज को अदा करेंगे तो इंशाल्लाह आपका कारोबार बहुत बढ़ेगा और हमारा मुल्क विकास की ओर एक नया कदम ज़रूर बढ़ाएगा। तो आपका साथ और हमारा साथ मिलकर ही होता हो सकता है ये विकास। इसलिए इन स्कीमों को से ज़रूर फ़ायदा उठाएं कि ये स्कीमें तो आपके लिए हमारे लिए ही है ना, तो जब हम ही नहीं फ़ायदा उठाएंगे तो फिर शिकायत बेकार होती है ना। इसलिए कोशिश की जा रही है हुकूमत हिंद की जानिब से, इस कोशिश के बढ़े हुए हाथ को थाम लीजिए और चलिए हाथ को थाम कर बढ़ते हैं एक नए हिंदुस्तान की जानिब, एक नए भारत की जानिब।

आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म मुकद्दर का सिकंदर का ये नगमा। शायरी थी अनजान की, जिसे मौसीकी से सजाया था कल्याण जी आनंद जी ने। जी हाँ, रोते हुए आते हैं सब और हंसता हुआ जो जाएगा वही मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। लेकिन हंसने के लिए भी तो पैसे की ज़रूरत पड़ती है ना। अगर जेब खाली हो, पेट खाली हो, तो फिर कोई कैसे हंस सकता है। तो जेबों को भरने के लिए, पेट को भरने के लिए, ज़िंदगी के आशाइशों को हासिल करने के लिए नौकरी बहुत ज़रूरी है, ज़रिया माश बहुत ज़रूरी है। और ज़रिया माश कितनी अहमियत रखती है ये जानते हुए हम कोशिश करते हैं आपको रोज़गार के मुतालिक कुछ अपडेट्स दे पाएँ। तो आज हम थोड़ी बात करेंगे कि अभी क्या क्या नई नौकरी के हवाले से क्या वैकेंसीज निकली हैं। हम कोशिश करेंगे आपको मालूम देने की, लेकिन आपका भी फ़र्ज़ है कि आप इसे तलाश करें और हमारी थोड़ी सी रहनुमाई जो हम आपको फ़राहम करें उसकी रोशनी में आगे बढ़ें और फौरन नौकरी हासिल करने के लिए जद्दोजहद शुरू कर दें। देखिए सामीन, रोज़गार सिर्फ माहाना आमदनी का ज़रिया नहीं होती ना, बल्कि इंसान की खुद एतमादी, खुद के फालत और बासल ज़िंदगी की बुनियाद भी है। एक मुनासिब मुलाजमत इंसान को अपने ख़ानदान की ज़रूरियात पूरी करने, बच्चों की तालीम बेहतर बनाने और मुस्तकबिल के लिए मनसूबा बंदी करने का मौका देती है। नौजवानों के लिए रोज़गार सिर्फ माशी ज़रूरत नहीं, बल्कि इनकी सलाहियतों को इस्तेमाल करने और मुल्क और माशरे की तरक्की में अपना किरदार अदा करने का एक अहम ज़रिया भी है। आज के दौर में सरकारी मुलाजमत के साथ साथ निजी शोबे, बैंकिंग, रेलवे, तालीम, सेहत, पुलिस, टेक्नोलॉजी और मुख्तलिफ तकनीकी शोबों में भी रोज़गार के मौके मौजूद हैं। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि नौजवान बाकायदगी से मुलाजमतों की ताज़ा मालूमात हासिल करें, अपनी तालीमी काबिलियत के मुताबिक मौके तलाश करें और आखिरी तारीख का ख़ास ख्याल रखें। आइए से बात हम रोज़गार की और नौकरी की कर रहे हैं ना, तो देख लेते हैं कि इस हफ्ते की अहम एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पर थोड़ी एक नज़र डाल लेते हैं। मगरबी बंगाल में WBPSC के मुतालिक मुख्तलिफ इम्तहानात और भर्ती के अमल जारी हैं। WBPSC मिसलेनियस सर्विस एग्जामिनेशन के सिलसिले में इस वक्त उम्मीदवारों के लिए अहम अपडेट्स सामने आई हैं। इसलिए मुतालिका उम्मीदवारों को वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन की सरकारी वेबसाइट पर ताज़ा नोटिस ज़रूर देखने चाहिए। इस तरह वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन से मुतालिक भर्ती का अमल भी तवज्जो का मरकज़ है। हालिया इतलात के मुताबिक नॉन टीचिंग स्टाफ की 8478 असामियों से मुतालिक अमल जारी है और OBC उम्मीदवारों के लिए कैटेगरी सब कैटेगरी में करेक्शन का मौका भी दिया गया है। और तालीम के शोबे में भी एक अहम पेशरफ्त हुई है। 11 सितंबर को वेस्ट बंगाल स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इन सर्विस टीचर्स के लिए टेट मुनक़द करने का हिदायत दी है, ताकि मुलाजमत पर मौजूद असातिज़ा की मतलूबा अहलियत और सर्टिफिकेशन को यकीनी बनाया जा सके। आपको बताती चलूं कि रेलवे में भी इस हफ्ते एक बड़ी खबर सामने आई है। रेलवे रिक्रूटमेंट्स बोर्ड ने मुख्तलिफ पैरामेडिकल कैटेगरीज में 560 वैकेंसीज के लिए रिक्रूटमेंट का ऐलान किया है। ऑनलाइन दरख्वास्त का अमल 15 सितंबर 2026 से 14 अक्टूबर

2026 तक जारी रहेगा। हाँ, तिब्बी और मुतालिका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन रखने वाले उम्मीदवार इस मौके से फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा इंडियन पोस्ट GDS के मुताबिक कि 23,000 से ज़्यादा आसामियों के लिए भी इस वक्त दरख्वास्तें जारी हैं। 10वीं जमात पास उम्मीदवारों के लिए ये एक अहम मौका है और दरख्वास्त की आखिरी तारीख 21 सितंबर 2026 तक बताई गई है। हमारी ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि बीच बीच में आपकी तफरी का भी ख्याल रखूँ। सिर्फ मालूमात की भरमार ना हो, थोड़े से नगमों की भी सुरीली आवाज़ कानों में आपको पड़े, ताकि जो है ना ये सिलसिला जो टूटे नहीं। ये खूबसूरत सिलसिला जो रेडियो को होता है ना, तफरी का और आपको साथ साथ मालूमात देने का भी, ये सिलसिला जारी रहे। तो चलिए हम सुनते हैं ना किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म नौकरी का नगमा। शैलेंद्र की शायरी को मौसीकी से सजाया है सलील चौधरी ने, और याद रखिएगा फिल्म का नाम है नौकरी।

ये कि हम बताएं आपको कि कहाँ कहाँ क्या क्या वैकेंसीज हैं, क्या नए अपडेट्स हैं, तो उसकी एक छोटी सी कोशिश में मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर रही हूँ। बताया है मैंने अभी तक आपको कि मग़रबी बंगाल में किस तरह से वैकेंसीज कहाँ कहाँ निकली हैं, थोड़ी सी नज़र डालनी है हम लोग बंगाल से बाहर के भी। मध्य प्रदेश में मैंने हाई कोर्ट में असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्टें जो खाली हुई हैं 1174 दरख्वास्त पोस्ट हैं। आप दरख्वास्त देने की तारीख 15 सितंबर आखिरी तारीख है, यानी कि आज आप थोड़ा इसे वेबसाइट पे चेक कर लें। अगर ऑनलाइन दरख्वास्त देने का अगर है तो आप आज भी दे सकते हैं। उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी आपको जाकर के वेटरिनरी फार्मेसिस्ट की 1308 वैकेंसीज मैंने दिखाई दे रही हैं, उसकी आखिरी तारीख 17 सितंबर 2026 तक है। हम बैंक सेक्टर में अगर हम बात करते हैं तो यूको बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर की 20 पोस्टें निकली हैं। दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख जो है 18 सितंबर है। और इसी तरह से UPSSSC में सीनियर इंस्ट्रक्टर की जो है ना 132 पोस्टें मतलब शो की गई हैं। उसकी भी इसके लिए भी आप इसे ज़रा से सर्च कर लें और देख लें। उसी जगह आप इसरो की अगर बात करते हैं तो इसरो में भी हमें इस वक्त जो है किस पोस्टें नज़र आ रही हैं, इंजीनियर साइंस बैकग्राउंड और वगैरह के लोग अगर इससे दिलचस्पी रखते हैं तो वो एक बार ज़रूर इसको सर्च करके देख लें, मज़ीद तफ़सीलात हासिल कर लें। इधर हम अगर बात करते हैं इंडियन पोस्ट वगैरह की तो वहाँ पर भी इंडियन पोस्ट में 25,000 से ज़्यादा हमें नज़र आ रही है वैकेंसीज। ग्रामीण डाक वगैरह में जो भी होता है ना सेवक पोस्ट की भी ज़रूरत है, वहाँ भी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, बड़ी भर्तियाँ शामिल हो रही हैं। आप उसे भी एक बार सर्च करें और देखें, मालूमात हासिल करें। अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में भी देख रहे हैं कि JEE में जो है 8074 जो जूनियर महकमों में भी इंजीनियर पोस्ट खाली हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि नौकरी जो है ना, रोज़गार का जो मौका जो है वो ज़िंदगी बदल देता है, और ज़िंदगी को बदलने के लिए भाई मेहनत ज़रूरी है और भागदौड़ ज़रूरी है। इसलिए आप भागदौड़ भी करें, मेहनत भी करें, मालूमात भी हासिल करें, नौकरी के लिए दरख्वास्तें भी दें और नौकरी हासिल करने के लिए फिर मेहनत भी करें, क्योंकि भाई वक्त का कारवाना रुकता नहीं है। आज अगर हम 20 के हैं तो कल देखते ही देखते 30 के हो जाएंगे, फिर 40 के हो जाएंगे। नौकरी की एक उम्र होती है, एक वक्त होता है, और वो उम्र जब निकल जाए ना तो फिर आप हाथ मलते रह जाएं कि हाय हमने जवानी में तो नौजवान जब थे तो हमने खेल कूद में वक्त गुजार दिया, मोबाइल के साथ वक्त गुजार दिया, इससे दोस्तों के साथ वक्त गुजार दिया, काश कि हमने मेहनत कर ली होती और नौकरी हासिल कर ली होती तो आज जो है ना लाइफ सेटल होती। तो खैर कोई बात नहीं, देर नहीं हुई, जब देर आए दुरुस्त आए वाला हाल है। वक्त का कारवां आगे बढ़ रहा है और मुझे कह रहा है कि बस अब आपने नौकरी की बातें बहुत ज़्यादा कर ली हैं, अब हमारे सामेईन को आप सुनाएं फिल्म कल आज और कल का ये नगमा। किशोर कुमार, आशा भोसले और मुकेश की आवाज़ों में आप समाअत फरमाएं नीरज की शायरी को शंकर जयकिशन की मौसीकी के साथ। आपकी समातों की नज़र कल आज और कल का ये खूबसूरत नगमा।

फाल्गुनी पाठक की आवाज में इस खूबसूरत नगमे से आप महसूस होते रहे और मैं आपको छोड़े जा रही हूँ संजुक्ता के साथ। अपनी मेजबान सोफिया शीरी को इजाजत दीजिए। खुदा।

I'ma live my life.

नमस्कार दोस्तों, मीडियम भी 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी कोलकाता का चैनल संचयता सूर्य की घड़ी में समय हो गया है 12:47 और इसी के साथ मैं पापिया हाजिर हो गई हूँ लेकर हिंदी कार्यक्रम सुरभि। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं चर्चा है से, जहां आज एक नहीं बल्कि दो दो दिनों के बारे में हम बात करेंगे। पहला है दूरदर्शन दिवस और दूसरा है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। तो चलिए दूरदर्शन दिवस से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज ही के दिन भारतीय टेलीविजन के इतिहास में बहुत खास है, क्योंकि 15 सितंबर 1959 को भारत में दूरदर्शन का प्रायोगिक सेवा शुरू की गई थी। तब न सैकड़ों चैनल थे, न मोबाइल पर वीडियो देखने की सुविधा और न ही इंटरनेट। टेलीविजन भी हर घर की चीज नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे दूरदर्शन भारतीय परिवारों का हिस्सा बन गया। शुरुआत दिल्ली से हुई और 1965 में दूरदर्शन की नियमित सेवा शुरू हुई। इसके बाद इसका विस्तार देश के अलग अलग हिस्सों तक होता गया और फिर आया वो दौर जिसे आज भी कई पीढ़ियां मुस्कुरा कर याद करती है। रविवार की सुबह रंगोली, फिल्मी गीतों का लिए चित्रहार, रविवार की फिल्म समाचार और फिर वे लोकप्रिय धारावाहिक। पूरा परिवार एक ही टेलीविजन के सामने बैठता था। उस समय मनोरंजन के विकल्प कम थे, लेकिन शायद इसी वजह से उन कार्यक्रमों की यादें ज्यादा गहरी हैं। आज हम मोबाइल पर अपनी पसंद का गीत कुछ सेकंड में सुन सकते हैं, किसी भी समय फिल्म देख सकते हैं, दुनिया भर की सामग्री हमारे हाथ में है। लेकिन एक समय था जब पूरे मोहल्ले को पता होता था कि शाम को कौन सा कार्यक्रम आने वाला है। दूरदर्शन ने सिर्फ हमें मनोरंजन नहीं दिया, उसने देश के अलग अलग हिस्सों की भाषा, संस्कृति, संगीत और कहानियों को करोड़ों लोगों तक पहुंचाने में मदद बहुत बड़ी भूमिका भी निभाई। काले सफेद पर्दे से लंगी

टेलीविजन तक और आज के डिजिटल युग तक भारत के प्रसारण की यह यात्रा बहुत लंबी रही। तकनीक बदल गई, देखने का तरीका बदल गया, लेकिन दूरदर्शन से जुड़ी यादें आज भी वैसी ही है। क्योंकि कभी कभी हमें याद आता है वो समय जब चैनल कम थे लेकिन साथ बैठने वाले लोग ज्यादा थे। आगे हम चर्चा करेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में और 15 सितंबर को ही दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2007 में 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। इस दिन का उद्देश्य लोकतंत्र के महत्व और उसके मूल सिद्धांतों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। लोकतंत्र, ये शब्द हम अक्सर सुनते हैं लेकिन इसका अर्थ केवल चुनाव और मतदान तक सीमित नहीं है। लोकतंत्र का मतलब है अपनी बात कहने का अधिकार, दूसरों की बात सुनने का धैर्य, अपनी असहमति व्यक्त करने की स्वतंत्रता और अलग विचार रखने वाले व्यक्ति के सम्मान को बनाए रखना। लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब नागरिक अपने अधिकारों के साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी समझते हैं। हमें से कई लोग कभी कभी सोचते हैं कि हमारा एक वोट से आखिर कितना फर्क पड़ेगा, लेकिन लोकतंत्र की असली ताकत इसी एक वोट और इसी एक नागरिक की भागीदारी से बनती है। जब हम मतदान करते हैं, सवाल पूछते हैं, सही जानकारी हासिल करते हैं और समाज के मुद्दों के प्रति जागरूक रहते हैं, तब हम लोकतंत्र की प्रक्रिया का हिस्सा भी बनते हैं। आज के समय में लोकतंत्र के सामने एक बड़ी चुनौती गलत और भ्रामक जानकारी भी है। सोशल मीडिया पर कोई खबर या संदेश मिलते ही उसे आगे बढ़ा देना आसान है, लेकिन जिम्मेदार नागरिक वही है जो पहले उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करे। क्योंकि लोकतंत्र को केवल बोलने वाली आवाजों की नहीं बल्कि जागरूक और जिम्मेदार आवाजों की भी जरूरत होती है। और लोकतंत्र की खूबसूरती शायद यही है कि इसमें हर व्यक्ति की राय एक जैसी होना जरूरी है। हमारे विचार अलग हो सकते हैं, हमारी पसंद अलग हो सकती है और हमारी प्राथमिकताएं अलग हो सकती है, लेकिन एक दूसरे की बात सुनने और सम्मान करने की क्षमता ही लोकतांत्रिक समाज की पहचान है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पर आइए लोकतंत्र को केवल एक व्यवस्था के रूप में नहीं बल्कि अपने रोजमर्रा के व्यवहार के हिस्सा माने। अपनी आवाज का इस्तेमाल करें, दूसरों की आवाज का सम्मान करें, तथ्यों को समझें, अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को भी याद रखें। आखिर मजबूत लोकतंत्र केवल मजबूत संस्थाओं से नहीं बनता, वो जागरूक नागरिकों से भी बनता है। इसी विचार के साथ आप सबको अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस और दूरदर्शन दिवस की शुभकामनाएं। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और सुन लेते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गाना विशाल मिश्रा की आवाज में।

दोस्तों, आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम पहल की ओर जाएंगे सुरभि के अंतर्गत, पर उससे पहले एक विशेष सूचना। मुख्य पोस्टमास्टर जनरल पश्चिम बंगाल सर्किल की अध्यक्षता में दिनांक 28/10/2026 को दोपहर 12:30 मुख्य पोस्टमास्टर जनरल के कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्किल योगायोग भवन P36 CR एवेन्यू कोलकाता 7000012 में गूगल मीट यानी वीडियो सम्मेलन के माध्यम से 138वीं डाक अदालत एवं पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी। इस अदालत में पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के डाकघरों से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगियों की डाक सेवाओं और पेंशन दावे से संबंधित शिकायतों का निपटान किया जाएगा। शिकायत पत्र में संदर्भ संख्या, विभिन्न डाक प्राधिकारियों से पूर्व प्राप्त पत्रों की तारीख एवं शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर सहित पूर्ण ब्यूरो का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। शिकायत श्री एस सी दास, सहायक निदेशक डाक सेवा ग्राहक संतुष्टि, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्कल P36 CR एवेन्यू कोलकाता 7000012 के नाम से भेजी जाए और ये डाक या ईमेल आईडी cpmg_wb@indiapost.gov.in, adpgcowb@gmail.com या pg.wb@indiapost.gov.in के माध्यम से दिनांक 30/9/2026 तक या उसके पूर्व पहुंच जानी चाहिए। शिकायतकर्ता से अनुरोध हो कि वो उपरोक्त निर्धारित तारीख एवं समय पर गूगल मीट यानी वीडियो सम्मेलन के जरिए डाक अदालत एवं पेंशन अदालत में उपस्थित हो। किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए सहायक निदेशक डाक सेवा ग्राहक संतुष्टि से दूरभाष संख्या 0331-2025-0 पर संपर्क किया जा सकता है। डाक अदालत पेंशन अदालत के आवेदनों ईमेल पर डाक अदालत पेंशन अदालत शब्द लिखा होना चाहिए। उपयुक्त डाक एवं पेंशन अदालत में उत्तराधिकार आदि से संबंधित विधिक मामले एवं नीतिगत मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। सूचना समाप्त हुई।

तो दोस्तों कार्यक्रम सुरभि में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं कार्यक्रम पहल की ओर। नमस्कार श्रोताओं, पहल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपकी अपनी दोस्त पापी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पहल की जिसने देश में नौकरी तलाशने वाले युवाओं के साथ साथ नौकरी देने वाले युवाओं के लिए भी एक नया रास्ता खोल दिया है। जी हाँ, आज हमारा विषय है स्टार्टअप इंडिया। जब हम स्टार्टअप शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में बड़ी बड़ी टैंक कंपनी, मोबाइल ऐप्स या करोड़ों रुपए की फंडिंग वाली कंपनियों की तस्वीर आती है। लेकिन स्टार्टअप का मतलब सिर्फ कोई बहुत बड़ी कंपनी शुरू करना नहीं। अगर आपके पास किसी समस्या का एक नया और उपयोगी समाधान है तो आप उसे एक व्यवसाय के रूप में विकसित भी कर सकते हैं, उस बड़े स्तर पर ले जाने की क्षमता भी रख सकते हैं, तो आप भी उद्यमिता की राह पर आगे बढ़ सकते हैं। भारत में युवाओं की संख्या बहुत बड़ी है और युवाओं के भीतर नए विचारों को भी की भी कोई कमी नहीं। जरूरत होती है सही जानकारी, सही मार्गदर्शन और सही अवसर की। इसी सोच के साथ भारत सरकार ने वर्ष 2016 में स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत की। इसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना, नए व्यवसायों के अनुकूल माहौल तैयार करना और युवाओं को अपने विचारों को व्यवसाय में बदलना

की प्रोत्साहित करना। अब जरा सोचिए, आपके शहर में कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान अभी ठीक नहीं मिल रहा। मान लीजिए किसानों को अपनी उपज सही खरीदार तक पहुंचाने में परेशानी होती है, कोई युवा ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाता है जो किसानों को खरीदारों से सीधे जोड़ देता है, या किसी छोटे शहर में डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने, स्थानीय दुकानदार से सामान मांगने, पर्यटन की जानकारी पाने, या विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने में समस्या है और कोई व्यक्ति उसका तकनीकी समाधान तैयार करता है। यही सोच आगे चलकर एक व्यवसाय के रूप में ले सकती है। स्टार्टअप इंडिया एक महत्वपूर्ण पहलू है, मान्यता यानी रिकॉग्निशन। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, हर नया व्यवसाय अपने आप स्टार्टअप इंडिया के तहत मान्यता प्राप्त स्टार्टअप नहीं बन जाता। इसके लिए निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करनी होती है और संबंधित प्रक्रिया के माध्यम से मान्यता के लिए आवेदन करना होता है। मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को सरकार की ओर से उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं और योजनाओं तक पहुंच मिल सकती है। इनमें से कुछ मामलों में नियमकीय प्रक्रियाओं में राहत, बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से जुड़ी सहायता, कर संबंधी कुछ लाभ और फंडिंग से जुड़े अवसर शामिल हो सकते हैं। हालांकि हर लाभ हर स्टार्टअप को स्वतः नहीं मिलता, उसके लिए अलग अलग पात्रता और शर्तें लागू हो सकती है। अब सवाल आता है, किसी व्यक्ति के मन में एक बिजनेस आइडिया है तो वो शुरुआत कहाँ से करे? सबसे पहला कदम है अपने आइडिया को स्पष्ट करना। सिर्फ ये सोचना काफी नहीं कि मैं कोई बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। आपको ये समझना होगा कि आप किस समस्या का समाधान कर रहे हैं, आपके ग्राहक कौन होंगे, वे आपके समाधान के लिए भुगतान क्यों करेंगे और आपका व्यवसाय दूसरे विकल्पों से किस तरह अलग होगा। दूसरा कदम है बाजार को समझना। कई बार हमें अपना आइडिया बहुत अच्छा लगता है लेकिन असली ग्राहक उसे उतना उपयोगी नहीं मानते, इसलिए संभावित ग्राहकों से बात करना, उनकी समस्या समझना और पता लगाना बहुत जरूरी है कि बाजार में पहले से कौन कौन से समाधान मौजूद है। तीसरा कदम है कि शुरुआती मॉडल तैयार करना। इसे आप सरल भाषा में अपने उत्पाद या सेवा का पहला संस्करण कह सकते हैं। इसे अंग्रेजी में मिनिमम वायबल प्रोडक्ट यानी MVP भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य ये नहीं कि पहली बार में सब कुछ परफेक्ट बन जाए, उद्देश्य है विचार को वास्तविक दुनिया में आजमाना और ग्राहकों से प्रतिक्रिया लेना। स्टार्टअप इंडिया की यात्रा में एक और महत्वपूर्ण विषय है DPIIT रिकॉग्निशन। DPIIT यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंटरनल ट्रेड। पात्र स्टार्टअप इस विभाग से स्टार्टअप रिकॉग्निशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये मान्यता स्टार्टअप को सरकारी स्तर पर औपचारिक पहचान देती है और पात्रता के आधार पर कई सुविधाओं तक पहुंचा भी सकती है। यहाँ एक जरूरी सावधानी भी है, इंटरनेट पर स्टार्टअप इंडिया के नाम से बहुत सारी जानकारियां उपलब्ध है। आवेदन या किसी योजना के लाभ लेने से पहले आधिकारिक सरकारी स्रोत से जानकारी की पुष्टि करें। किसी एजेंट या अनजान व्यक्ति को सिर्फ इस आधार पर पैसे न दे कि स्टार्टअप इंडिया की मान्यता दिला देगा। सरकारी प्रक्रिया, पात्रता और शुल्क से संबंधी वर्तमान जानकारी आधिकारिक पोर्टल से ही जांचें। और अब बात करते हैं युवाओं की। अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपके मन में कोई बिजनेस आइडिया है तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि पहले नौकरी करो, बहुत साल बाद बिजनेस शुरू करो। आप अपनी पढ़ाई के साथ अपने आइडिया पर काम करना भी शुरू कर सकते हैं। कॉलेज के इनोवेशन क्लब, इंक्यूबेशन सेंटर, कॉम्पिटिशंस और मेंटरशिप प्रोग्राम्स आपके लिए शुरुआती मदद का माध्यम बन सकते हैं। और सिर्फ इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट पढ़ने वाले युवाओं के लिए ये उद्यमिता का रास्ता नहीं, कला, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, पर्यावरण, फैशन और स्थानीय सेवाओं जैसे अनेक क्षेत्रों में ये नए व्यवसाय का अवसर भी मौजूद है। भारत के छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी उद्यमिता की बहुत संभावनाएं हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश का कोई युवा पर्यटन से जुड़ी ऐसी सेवा विकसित कर सकता है जो स्थानीय होमस्टे, गाइड और यात्रियों को जोड़ती है। कोई युवा किसान स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग और ऑनलाइन बिक्री का काम शुरू कर सकता है। कोई महिला घर से खाद्य उत्पाद तैयार करके उन्हें स्थानीय बाजार में बेचने का काम कर सकती है। दोस्तों, भारत में एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब अब सिर्फ बड़े शहरों और बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं, डिजिटल तकनीक ने छोटे शहरों के युवाओं के लिए भी बाजार तक पहुंच जाना आसान कर दिया है। आज एक छोटा व्यवसाय स्थानीय ग्राहक के साथ साथ देश के दूसरे हिस्सों में भी ग्राहक बन सकता है। लेकिन तकनीक के साथ साथ जिम्मेदारी भी आती है। ग्राहक का डेटा सुरक्षित रखना, नई जानकारी, सही जानकारी देना, टैक्स और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को समझना और ग्राहकों के साथ ईमानदार व्यवहार करना किसी भी नए व्यवसाय के लिए उतना ही जरूरी है जितना अच्छा प्रोडक्ट बनाना। तो अगर आपके मन में कोई बिजनेस आइडिया है, उसे सिर्फ आइडिया बनाकर मत रखिए, उसे कागज पर लिखिए, समस्या पहचानिए, ग्राहकों से बात कीजिए, छोटा प्रयोग कीजिए, फीडबैक लीजिए, फिर धीरे धीरे उसे व्यवसाय का रूप दीजिए।
स्टार्टअप इंडिया आपके लिए कोई जादुई शॉर्टकट नहीं, ये एक इकोसिस्टम और सरकारी पहल है जो पात्र

उद्यमियों को आगे बढ़ने के लिए उपलब्ध अवसरों और सुविधाओं से जोड़ने की कोशिश करती है। असली ताकत आपके विचार, आपकी मेहनत और आपकी समस्या को समझने में है जिसे आप हल करना चाहते हैं। और याद रखिए, एक सफल उद्यम हमेशा किसी बड़े ऑफिस से नहीं शुरू होती, कई बार वह एक छोटे से कमरे से बैठकर शुरू होती है। व्यक्ति के दिमाग में आए एक सवाल से शुरू होता है कि क्या इसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है। अगर आपके मन में भी कोई ऐसा सवाल है तो शायद वही आपके अगले कदम की शुरुआत है। और आज पहल में बस इतना ही। उम्मीद है स्टार्टअप इंडिया से जुड़ी ये जानकारी आपको आपके किसी विचार को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगी। फिलहाल पहल से लेती हूँ विदा और पढ़ते हैं आगे। और कार्यक्रम सुरभि का भी अब अंत हो चला है, तो जाते जाते छोटा सा गाना चलिए आतिफ असलम की आवाज़ में सुन लेते हैं। और 12:20 से होगी बेस्ट म्यूजिक की शुरुआत वापस।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि सतत विकास ढांचे में चक्रीय अर्थव्यवस्था सिद्धांतों को समाहित करने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पुनर्उपयोग, मरम्मत और संरक्षण के अपनी प्राचीन पद्धतियों को समकालीन नीतियों में आधुनिक रूप दिया है। उन्होंने ये बात गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच WCF 2026 के 10वें संस्करण के उद्घाटन समारोह में कही। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इसका संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ये सम्मेलन भारत में पहली बार आयोजित हो रहा है। 65 से अधिक देशों के 2000 से अधिक हितधारक इसमें भाग ले रहे हैं। इसका विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था, जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा उद्योगों के बीच साझेदारी भारत को रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। श्री सिंह ने नई दिल्ली में DRDO उद्योग सहभागिता सम्मेलन विमर्श 2026 को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि DRDO ने मिसाइल से लेकर रडार, लड़ाकू विमान से लेकर पनडुब्बियों और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी क्षमता साबित की है। श्री सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में रक्षा क्षेत्र में किए गए सुधार अभूतपूर्व हैं।
1: अभी पिछले कुछ वर्षों में हमने डिफेंस सेक्टर में जो रिफॉर्म्स देखे हैं, मैं कह सकता हूं कि वह अनप्रेसिडेंटेड है। हमारे प्रधानमंत्री के विजन और लीडरशिप में हमने कई गेम चेंजिंग फैसले लिए हैं, चाहे वो पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट हो, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हो, IDEX हो, अदिति हो, या फिर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट का 25% प्राइवेट सेक्टर के लिए एलोकेशन का फैसला हो।
0: उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने कहा है कि संघर्षों और विरोधाभासों से जूझ रही दुनिया में नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता उल्लेखनीय है। भारतीय विश्व मामलों की परिषद ICWA के रजत जयंती समारोह में उन्होंने सर्वसम्मति से अपनाई गई नई दिल्ली घोषणा को बड़ी उपलब्धि बताया। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा कि भारत वैश्विक चुनौतियों पर अपने दृष्टिकोण को अधिक आत्मविश्वास के साथ व्यक्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश के हित तेजी से दुनिया भर से जुड़ रहे हैं और भारत से विश्व की अपेक्षाएं भी बढ़ी हैं। सरकार ने कहा है कि बैंक 2000 रुपए तक के एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI लेनदेन और रुपे डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई भी शुल्क नहीं लगा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने UPI लेनदेन पर

0: शुल्क से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान तथा निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत इन बदलावों को अधिसूचित किया है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने रेजीनगर सीट से शाखाराव सरकार को उम्मीदवार बनाया है, जबकि नंदीग्राम विधानसभा सीट से हसीरानी रथ पार्टी के उम्मीदवार होंगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। दिशा सालियान की 8 जून 2020 को एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। ये प्राथमिकी बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद दर्ज की गई है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन द्वारा विदेशी छात्रों और पत्रकारों के रहने की अवधि पर लगाई गई सख्त सीमाओं के नियम पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि इस नीति को लागू करने से अमेरिका की अर्थव्यवस्था और उच्च शिक्षा प्रणाली को भारी नुकसान हो सकता है। भारत का राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन आज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस लोक सेवा प्रसारक की शुरुआत 1959 में ऑल इंडिया रेडियो के अंतर्गत एक प्रायोगिक टेलीविजन सेवा के तौर पर हुई थी। भारत और अफगानिस्तान के बीच 2020 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 147 अंक गिरकर 74,635 पर और निफ्टी 74 अंक की गिरावट के साथ 23,324 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Defence Minister Rajnath Singh has said measures have been taken to ensure that India does not remain dependent on imports in the defence sector but moves towards self-reliance. Addressing the DRDO Industry Synergy Meet Vimarsh 2026 in the national capital today, Mr. Singh said self-reliance should become a part of the nation's character and attitude.
2: अभी पिछले कुछ वर्षों में हमने डिफेंस सेक्टर में जो रिफॉर्म्स देखे हैं।
3: द रिफॉर्म्स विटनेस्ड इन द डिफेंस सेक्टर ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स आर अनप्रेसिडेंटेड एंड सेवरल गेम चेंजिंग डिसीजंस हैव बीन टेकन। दिस इंक्लूड द पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट, द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, आईडेक्स, अदिति एंड द डिसीजन टू एलोकेट 25% ऑफ द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट टू द प्राइवेट सेक्टर।
2: और इसके परिणाम आप सबने महसूस भी किए।
1: The Defence Minister said the partnership between DRDO and industry can make India a global hub for defence manufacturing. Mr. Singh said over the years, DRDO has demonstrated its capabilities in every field from missiles to radars, combat aircraft to submarines, electronic warfare system to artificial intelligence. Minister for Environment, Forest and Climate Change Bhupendra Yadav has underlined India's commitment to embedding circular economy principles into its sustainable development framework. Addressing the inaugural session of the 10th edition of the World Circular Economy Forum 2026 in Gandhinagar, Gujarat today, the minister stressed that India has modernized its deep-rooted ancient cultural practices of reuse, repair and conservation values into contemporary policies under the leadership of Prime Minister Narendra Modi.
4: Circularity must extend it beyond waste management. It calls for embedding circular economy principles into the development and maintenance of sustainable and resilient infrastructure. For India, this is an important moment because our BRICS chairship has placed circular economy alongside sustainable lifestyles.
1: National Engineers Day is being celebrated today to honour the birth anniversary of Mokshagundam Vishveshwaraya, one of India's greatest engineers. The day is celebrated to remember Vishveshwaraya's contributions and honour the role of engineers in the nation's growth. Prime Minister Narendra Modi has paid tributes to M. Vishveshwaraya. In a social media post, Mr. Modi extended his greetings to engineers for their contributions to building, innovating and providing solutions for a better tomorrow.
5: महान इंजीनियर्स की हमारी विरासत में एक ऐसा रत्न भी हमें मिला जिसके कार्य आज भी लोगों को अचंभित कर रहे हैं, और वे थे भारत रत्न डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया। उन्हीं की याद में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाए।

0: आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए किशाऊ बहुद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, भारत सतत विकास के अंतर्गत चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच की बैठक गांधीनगर में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को राष्ट्र निर्माण का कर्मयोगी बताया। अमरीकी अदालत ने विदेशी छात्रों और पत्रकारों के लिए ट्रंप प्रशासन के नए वीजा नियमों पर रोक लगा दी है। मौसम विभाग ने आज पंजाब, दिल्ली, कच्छ, तमिलनाडु, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज शाम दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। श्री सिंह ने नई दिल्ली में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन उद्योग सहभागिता सम्मेलन विमर्श 2026 को संबोधित करते हुए ये बात कही।
1: अभी पिछले कुछ वर्षों में हमने डिफेंस सेक्टर में जो रिफॉर्म्स देखे हैं, मैं कह सकता हूं कि वह अनप्रेसिडेंटेड है। हमारे प्रधानमंत्री के विजन और लीडरशिप में हमने कई गेम चेंजिंग फैसले लिए हैं, चाहे वो पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट हो, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हो, आईडेक्स हो, अदिति हो, या फिर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट का 25% प्राइवेट सेक्टर के लिए एलोकेशन का फैसला हो।
0: श्री सिंह ने DRDO तथा उद्योग के बीच साझेदारी भारत को रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
1: TDF के माध्यम से स्टार्टअप्स को ग्रांट्स दिए जा रहे हैं और अनेक टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन स्टेज तक पहुंच चुकी है। आईडेक्स ने भी डिफेंस इनोवेशन के लिए एक नया इकोसिस्टम भी तैयार किया है, जहां स्टार्टअप्स हमारी वास्तविक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के आधार पर सॉल्यूशंस विकसित कर रहे हैं। अब DRDO और इंडस्ट्री की पार्टनरशिप केवल प्रोडक्शन तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। रिसर्च, डिजाइन, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग की पूरी वैल्यू चेन में साझेदारी हमें बढ़ानी हो।
0: उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने कहा है कि संघर्षों और विरोधाभासों से जूझ रही दुनिया में नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता उल्लेखनीय है। भारतीय विश्व मामलों की परिषद ICWA के रजत जयंती समारोह में उन्होंने सर्वसम्मति से अपनाई गई नई दिल्ली घोषणा को बड़ी उपलब्धि बताया। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत वैश्विक चुनौतियों पर अपने दृष्टिकोण को अधिक आत्मविश्वास के साथ व्यक्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश के हित तेजी से दुनिया भर से जुड़ रहे हैं।
2: इंडिया टुडे। भारत का संबंध आज कहीं अधिक व्यापक देशों और क्षेत्रों से है। हमारी जिम्मेदारियां और दुनिया की भारत से अपेक्षाएं दोनों बड़ी हैं। भारत वैश्विक चुनौतियों पर अपने दृष्टिकोण को अधिक आत्मविश्वास के साथ व्यक्त कर रहा है। भारत की वैश्विक भूमिका बढ़ने के साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हमारी बौद्धिक भागीदारी को भी उसी गति से आगे बढ़ना होगा।
3: आवर इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट विद इंटरनेशनल अफेयर्स मस्ट कीप पेस।
0: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने आज यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए किशाऊ बहुद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर केंद्रीय जलशक्ति मंत्री CR पाटिल, केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय जल संसाधन सचिव और संबंधित राज्यों के मुख्य सचिव भी उपस्थित थे। इससे पहले इसी वर्ष जून में गृहमंत्री अमित शाह ने संबंध में इन प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि किशाऊ बहुद्देशीय बांध परियोजना की 90% लागत केंद्र सरकार द्वारा जबकि शेष 10% लागत 6 भागीदार राज्यों द्वारा वहन की जाएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध है।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सतत विकास ढांचे में चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को समाहित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया है। गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच WCEF 2026 के 10वें संस्करण के उद्घाटन में श्री यादव ने कहा कि विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व EPR

0: विनियमों और मिशन लाइफ जैसी पहलें चक्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण कदम हैं।
1: अंडर द ईपीआर मैकेनिज्म,
2: ईपीआर व्यवस्था के अंतर्गत ईपीआर प्रमाण पत्रों का हस्तांतरण पुनर्चक्रणकर्ताओं को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है, जिससे क्षमता विस्तार, तकनीकी उन्नति और पुनर्चक्रण गतिविधियों में वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। ये सभी मिलकर संपूर्ण पुनर्चक्रण मूल्य श्रृंखला में रोजगार सृजन और आजीविका में योगदान करते हैं। विभिन्न ईपीआर ढांचों के अंतर्गत 83,000 से अधिक उत्पादक और 4,802 पुनर्चक्रणकर्ता पंजीकृत हैं।
0: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसका संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ये सम्मेलन भारत में पहली बार आयोजित हो रहा है। 65 से अधिक देशों के 2,000 से अधिक हितधारक इसमें भाग ले रहे हैं। इसका विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। एक रिपोर्ट।
3: गांधीनगर में आयोजित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व यानी कि ईपीआर विनिमयों और मिशन लाइफ जैसे पहलों को भारत की चक्रीय अर्थव्यवस्था यात्रा के लिए महत्वपूर्ण बताया। ब्रिक्स नई दिल्ली घोषणा पत्र, भारत यूरोपीय संघ सहकार में चक्रियता के बढ़ते महत्व का उल्लेख करते हुए केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि चक्रियता की शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए। समारोह को संबोधित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि विकास, पारिस्थितिकी, समृद्धि और स्थिरता को एक साथ आगे बढ़ना होगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिनिश इनोवेशन फंड सिट्रा और गुजरात सरकार के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस दो दिवसीय मंच में AI के अनुप्रयोग, हरित ऊर्जा, टिकाऊ वित्त सुशासन और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र जैसे विषयों पर 4 पूर्ण सत्र और 16 विषयगत सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार से कहा कि नए सदस्यों की नियुक्ति होने तक अर्ध न्यायिक निकायों के सेवानिवृत्त होने वाले पीठासीन अधिकारियों और सदस्यों का कार्यकाल करीब 1 महीने तक बढ़ाने पर विचार किया जाना चाहिए, जिससे कामकाज प्रभावित न हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। दिशा सालियान की 8 जून 2020 को एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। ये प्राथमिकी बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद दर्ज की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने रेजीनगर सीट से शाखाराव सरकार को उम्मीदवार बनाया है, जबकि नंदीग्राम विधानसभा सीट से हसीरानी रथ पार्टी की उम्मीदवार होंगी। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के रात्रि भोज में कांग्रेस शासित 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की अनुपस्थिति की आलोचना की। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा नेता और सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि राजनीतिक और वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब भारत और राष्ट्रहित की बात आती है तो किसी भी प्रकार के मतभेद की कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। आज राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस हर साल 15 सितंबर को भारत के महानतम इंजीनियरों में से एक मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष में मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
4: इंजीनियर्स भारत के विकास की सबसे बड़ी ताकतों में से एक हैं। वे देश के जरूरी बुनियादी ढांचे को तैयार करने के साथ साथ नई तकनीकों और ज्ञान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। एम विश्वेश्वरैया इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने नई तकनीकों, दूरदर्शी योजना और व्यवहारिक समाधानों के जरिए देश के बुनियादी ढांचे के विकास में बड़ा योगदान दिया। आज जब भारत तेजी से तकनीकी विकास और बदलाव के एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है, तब इंजीनियर्स की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। ऋषु के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को राष्ट्र निर्माण का कर्मयोगी बताया। प्रधानमंत्री ने डॉ एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि एम विश्वेश्वरैया एक इंजीनियरिंग प्रतिभा थे, जिनकी राष्ट्र निर्माण की दूरदृष्टि नागरिकों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी।
5: महान इंजीनियर्स की हमारी विरासत में एक ऐसा रत्न भी हमें मिला, जिसके कार्य आज भी लोगों को अचंभित कर रहे हैं, और वे थे भारत रत्न डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया। उन्हीं की याद में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे देश के इंजीनियर पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। मैं इस अवसर पर सभी इंजीनियरों को उनकी निर्माण शक्ति को आदर पूर्वक नमन करता हूँ।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने भी एम विश्वेश्वरैया की जयंती

0: पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन द्वारा विदेशी छात्रों और पत्रकारों के रहने की अवधि पर लगाई गई सख्त सीमाओं के नियम पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि इस नीति को लागू करने से अमेरिका की अर्थव्यवस्था और उच्च शिक्षा प्रणाली को भारी नुकसान हो सकता है। ट्रंप प्रशासन ने इस साल जुलाई में इस नियम को अंतिम रूप दिया था। भारत का राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन आज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस लोक सेवा प्रसारक की शुरुआत 1959 में ऑल इंडिया रेडियो के अंतर्गत एक प्रायोगिक टेलीविजन सेवा के तौर पर हुई थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दूरदर्शन अपनी कई बेहतरीन सेवाओं जैसे सैटेलाइट और डायरेक्ट टू होम सर्विस के जरिए 100% आबादी तक पहुँचने वाला माध्यम है।
2: 15 सितंबर 1959 को दूरदर्शन की स्थापना के साथ भारत में टेलीविजन प्रसारण की शुरुआत हुई। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसी दिन दूरदर्शन के पहले प्रसारण का उद्घाटन किया था। वर्ष 1982 में दिल्ली एशिया खेलों के दौरान रंगीन टेलीविजन की शुरुआत ने दूरदर्शन के प्रसारण और दर्शकों की संख्या को नई ऊंचाई दी। वर्तमान में दूरदर्शन के 35 सैटेलाइट चैनल और 66 स्टूडियो केंद्र हैं। ये 24 से अधिक भाषाओं और विभिन्न बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित करता है। दूरदर्शन ने रामायण, भारत, हम लोग, बुनियाद, चाणक्य, मालगुडी डेज, शक्तिमान, चित्रहार, फौजी सर्कस और उड़ान जैसे कई लोकप्रिय और यादगार धारावाहिक भी प्रसारित किए। आरजू के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मौसम विभाग ने आज हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, दिल्ली, कच्छ, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पुदुचेरी, केरलम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता जारी की। एक रिपोर्ट।
3: राज्य के 15 जिलों के 88 प्रखंडों में करीब 49 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय दल के बिहार दौरे को लेकर उनकी गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत हुई है।
4: आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक टीम बनाने का निर्देश दिया है। गृह मंत्री जी का फोन आया था कि हम लोग एक केंद्रीय टीम केंद्रीय मंत्री के स्तर पर बिहार शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में आएगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ।
3: आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: भारत और अफगानिस्तान के बीच 2020 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। पहले मैच में रविवार को भारत ने 7 विकेट से जीत हासिल की थी। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। तीसरा मैच बृहस्पतिवार को दिल्ली में ही होगा। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र में 0.5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 337 अंक गिरकर 74,445 पर आ गया, जबकि निफ्टी 130 अंक गिरकर 23,268 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, भारत सतत विकास के अंतर्गत चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच की बैठक गांधीनगर में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को राष्ट्र निर्माण का कर्मयोगी बताया। अमेरिकी अदालत ने विदेशी छात्रों और पत्रकारों के लिए ट्रंप प्रशासन के नए वीजा नियमों पर रोक लगा दी है। मौसम विभाग ने आज पंजाब, दिल्ली, कच्छ, तमिलनाडु, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज शाम दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
1: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
0: जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं।
1: हम लोगों ने कई दफा देखा है कि इस प्रकार का आंख में धूल झोंकने वाली हरकत पाकिस्तान करता रहा है। इससे एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर के नाम पे अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है, उनको एक्शन लेना चाहिए क्योंकि उनको खुद ही पता है कि लोग कहाँ हैं, उनको अरेस्ट करना चाहिए।
0: ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइया पर हमले से संबंधित प्रश्न पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चलदल के सदस्यों, आम नागरिकों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि संघर्षों और विरोधाभासों से जूझ रही दुनिया में नई दिल्ली में आयोजित सफल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन उल्लेखनीय है। नई दिल्ली में एक समारोह में उन्होंने नई दिल्ली घोषणा पत्र को बड़ी उपलब्धि बताया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत वैश्विक चुनौतियों पर अपने दृष्टिकोण को अधिक आत्मविश्वास के साथ व्यक्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश के हित तेजी से दुनिया भर से जुड़ रहे हैं और भारत से विश्व की अपेक्षाएं भी बढ़ी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा उद्योग के बीच साझेदारी भारत को रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। रक्षा मंत्री ने कहा कि DRDO ने मिसाइल से लेकर रडार, लड़ाकू विमान से लेकर पनडुब्बियों और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली से लेकर AI तक हर क्षेत्र में अपनी क्षमता साबित की है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने आज यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में यह समझौता हुआ। इससे पहले इस वर्ष जून में गृह मंत्री अमित शाह ने इस संबंध में इन प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि परियोजना की 90% लागत केंद्र सरकार द्वारा और शेष 10% लागत 6 भागीदार राज्यों द्वारा वहन की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नुआखाई के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। श्री मोदी ने कहा कि ये पर्व किसान, फसल और भाईचारे का उत्सव है और ये सद्भाव की भावना को मजबूत करता है। ओडिशा के प्रमुख पर्व नुआखाई का अर्थ है नया खाना। इसे धान की नई फसल आने पर मनाया जाता है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स आज 778 अंक की गिरावट के साथ 74,004 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 280 अंक गिरकर 23,119 पर बंद हुआ। भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा 2020 क्रिकेट मैच आज शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। पहले मैच में भारत ने 7 विकेट से जीत दर्ज की थी। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। तीसरा मैच बृहस्पतिवार को दिल्ली में ही खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, दिल्ली, कच्छ, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पुदुचेरी, केरलम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने मछुआरों को कल तक अरब सागर में और शनिवार तक दक्षिण पश्चिम अरब सागर के पश्चिम मध्य अरब सागर से सटे कुछ हिस्सों में न जाने की सलाह दी है। शनिवार तक बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में भी समुद्र में न जाने की दी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। The External Affairs Ministry has said

स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है दोस्तों 5:20 और 45 सेकंड। दो सौ 97.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रही हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो और चैनल में। आप सभी ये जो विशेष कार्यक्रम आज का सुन रही हैं उसका नाम है उर्वशी। दोस्तों उर्वशी के अंतर्गत आज के दिन यानी कि मंगलवार के दिन हम आपके लिए विशेष जो सेगमेंट लेकर आते हैं उस सेगमेंट का नाम है एक ही फिल्म से, यानी एक ऐसी फिल्म जिस फिल्म में किसी विमेन सेंट्रिक फिल्म से ही हम जुड़ी बातें करते हैं और उसी फिल्म के एक ही फिल्म से ढेर सारे जो गाने हैं उसके जितने भी गाने हैं कोशिश करते हैं कार्यक्रम में ज़रूर आपको सुनाए। तो दोस्तों फिलहाल आपको बता दें कि स्टूडियो की घड़ी में जो समय हो रहा है वो इशारा कर रहा है कि शुरू किया जाए आज का सेगमेंट। तो इस सेगमेंट को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आज उर्वशी के अंतर्गत हमारा जो सेगमेंट है यानी कि एक ही फिल्म से, इसमें हम बातें करने जा रही हैं एक ऐसी फिल्म की जो कि 1963 में आई थी। जी हाँ, 1963 की फिल्म बंदिनी में जितने भी गीत थे उन गीतों को आप सुनेंगे आज के कार्यक्रम के अंतर्गत, कार्यक्रम उर्वशी में एक ही फिल्म से।

वेल फ्रेंड्स, अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज़ में इस गीत को। आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म जो था उसका मैं आपको नाम बता दूं, फिल्म बंदिनी से आप सुन रहे थे इस गीत को शैलेंद्र की बोल और साथ ही एसडी बर्मन की धुन में। तो दोस्तों आपको बता दें कि 1963 में ये फिल्म जो है रिलीज़ होती है और इस फिल्म में मुख्य किरदार में नज़र आई थी नूतन, उनके साथ थे अशोक कुमार और साथ ही अभिनीत धर्मेंद्र द्वारा भी थी ये फिल्म। तो दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म का डायरेक्शन जो है वो विमल रॉय ने किया था और इस फिल्म को लिखा था नवेंदु घोष ने। और आपको बता दूं कि ये जो फिल्म है इस फिल्म को बनाया गया था एक नॉवल, एक बंगला नॉवल है उसके आधार पर, एक बंगला उपन्यास के आधार पर, तामसी नाम के इस उपन्यास के पर आधारित ये फिल्म थी। और इस फिल्म में बहुत ही खूबसूरती से जो है जो एक्टर्स हैं उन्होंने अभिनय किया था। और साथ ही आपको ये बता दें कि वंदिनी जो थी ये उस वर्ष यानी 1963 के आसपास जब ये फिल्म रिलीज़ होती है तो ये हाईएस्ट ग्रॉसर ऑफ द ईयर यानी कि सबसे ज़्यादा आय करने वाली फिल्म बन जाती है और साथ ही साथ इसे सेमी हिट भी घोषित किया गया था बॉक्स ऑफिस द्वारा। और आपको बता दें कि इस फिल्म में बहुत सारे बेहतरीन तराने थे और साथ ही इन तरानों के साथ साथ इस फिल्म के खूबसूरत गीतों को एसडी बर्मन ने कंपोज किया था। अधिकतर जो गीत थे उसके बोल लिखे थे शैलेंद्र ने और साथ ही आपको बता दें कि गुलजार ने भी इस फिल्म से फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया था। और आपको बता दें कि इस फिल्म में बेहतरीन तराने थे जिनमें कुछ तराने लता मंगेशकर और कुछ तराने आशा भोसले की आवाज़ में थे और साथ ही मन्ना दे मुकेश और एसडी बर्मन की आवाज़ में भी इस फिल्म में गीत जो हैं वो सुने गए। तो दोस्तों इस फिल्म के विषय में और भी बातें ज़रूर होंगी लेकिन फिलहाल आप सभी के लिए मन्ना दे की आवाज़ में ये गीत।

स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 5:32:40। आप सुन रही हैं कार्यक्रम उर्वशी 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज़ पर। ये कार्यक्रम जो है इसे आप न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी सुन सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि आज के कार्यक्रम में हम जिस एक फिल्म के विषय में कर रहे हैं बातें एक ही फिल्म से सेगमेंट में, उस फिल्म का नाम है बंदिनी। ये फिल्म आई थी 1963 में और इस फिल्म के निर्माता निर्देशक थे बिमल रॉय, जिन्होंने दो बीघा जमीन और मधुमती जैसी फिल्मों को बनाया था। इस फिल्म के मुख्य किरदारों को तो आपको बता ही चुकी हूँ मुख्य किरदार किन लोगों ने निभाए थे, लेकिन साथ ही आपको ये भी बता दूं कि बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक प्रदर्शन करने के साथ साथ इस फिल्म ने फिल्म फेयर पुरस्कारों की वर्षा भी लगा दी। उस वर्ष इस फिल्म ने 6 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते। दोस्तों आपको बता दें 6 फिल्म फेयर पुरस्कार एक ही साथ एक ही फिल्म के लिए पाना बहुत बड़ी बात होती है, और साथ ही फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार भी इसी फिल्म को प्राप्त हुआ था। ये फिल्म एक वुमेन सेंट्रिक फिल्म है, यानी नारी प्रधान फिल्म है, जो कि बहुत ही खूबसूरती से मतलब यहाँ पर एक किरदार को पोर्ट्रे किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि सुजाता के बाद बिमल रॉय ने ये दूसरी नारी प्रधान फिल्म बनाई थी, और बंदिनी की जो कहानी है वो कल्याणी यानी कि नूतन के आसपास घूमती है, और इस फिल्म में जो नूतन है उन्होंने बहुत ही असाधारण अभिनय से अब इस फिल्म को बहुत ही सुंदर बना दिया। दोस्तों फिल्म की जिस्ट अगर आपको बताएं तो कल्याणी यानी नूतन जेल में एक कैदी है जिस पर खून का इल्जाम चल रहा है। जेल में एक बूढ़ी कैदी है जो कि तपेदिक के रोग से ग्रस्त हो जाती है, और फिर कल्याणी स्वेच्छा से उसकी देखभाल करने को राजी हो जाती है। वो बूढ़ी औरत इलाज करते करते जेल के डॉक्टर देवेंद्र यानी कि धर्मेंद्र को कल्याणी से जो है वहाँ पर मतलब प्रेम हो जाता है कहीं ना कहीं, और कल्याणी अपने अतीत के कारण उस प्यार को ठुकरा देती है। देवेंद्र जेल की नौकरी से इस्तीफा देकर अपने घर वापस चले जाते हैं, और फिर उस जेल में जेलर महेश यानी कि तरुण बोस के रूप में जो तरुण बोस

अभिनय किरदार के रूप में नजर आए थे और साथ ही देवेंद्र के घरेलू संबंध के कारण देवेंद्र जेलर को जो है उनका जो किरदार है वो यहाँ पर खास हो जाता है। साथ ही आपको बता दें कि ये जो फिल्म है, इस फिल्म में कल्याणी जो है वो अपनी आप बीती जेलर को सुनाने लगती है और फिर उसका अतीत इतना दुख भरा है कि वे भूल भी नहीं पाती है और जेलर उसे अपनी कहानी लिख कर देने को कहते हैं। तो कल्याणी जो है वो अतीत में चली जाती है और साथ ही फिल्म भी अतीत में यानी कि फ्लैशबैक में चली जाती है और कल्याणी बताती है कि उसके पिता एक गांव में पोस्ट मास्टर रहते हैं और वहां पर वे अपनी माँ और बड़े भाई को खो चुकी थी। उसके साथ ही उनके गांव में एक स्वतंत्रता सेनानी जो है विकास घोष के किरदार में नजर आए थे अशोक कुमार, उस रूप में नज़रबंद हो जाते हैं और दोनों को आपस में प्रेम हो जाता है। विकास और कल्याणी लौट आने पर उनसे शादी करने का वादा करके चले जाते हैं लेकिन फिर कभी वापस नहीं आते और गांव वालों को अपने पिता को दिए जाने वाले जो ताने थे उन्हें सुनकर एक दिन कल्याणी जो है वो गांव छोड़कर आ जाती है और वहां अस्पताल में एक नौकरी करने लगती है। ऐसे में जो ये कल्याणी है उसे एक ऐसी महिला की देखभाल करनी रहती है जो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं थी और फिर उनका जब जिम्मा उन्हें सौंपा जाता है तो काफ़ी बुरा भला भी उसे कहती है लेकिन एक दिन उसकी शहर में रहने वाली जो सखी आकर बताती है कि कल्याणी के पिता उसे खोजते हुए उसके घर आए थे और फिर जब वो अस्पताल आने के लिए निकले तो एक मोटर से टकरा गए लेकिन जब वे दोनों कल्याणी के पिता को देखने दूसरे अस्पताल में पहुंचती हैं तब तक वे दम तोड़ चुके होते हैं। ऐसे में कल्याणी जब वापस अपने अस्पताल आती है तो देखती है कि उस महिला के पति जो हैं वो विकास ही हैं जिस महिला की देखभाल वो कर रही थी। क्रोध में आकर वो उस महिला को चाय में जहर मिलाकर पिला देती है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है और कल्याणी अपना जुर्म कबूल कर लेती है। दोस्तों ऐसे में फिर आगे क्या होता है कहानी में ये जानने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। फिलहाल आप सभी के लिए पेश है इसी फिल्म का ये अगला गीत।

दोस्तों तो कहानी कुछ इस मोड़ पर पहुंचती है कि नूतन यानी कि कल्याणी जो है वो अपना जुर्म कबूल लेती है और फिर फिल्म जो है वो वर्तमान में आ जाती है और जेलर की कोशिशों से कल्याणी की रिहाई भी हो जाती है। जब कल्याणी जेलर से मिलने पहुंचती है तो जेलर उसको देवेंद्र की माँ का खत पकड़ाते हैं और जिसमें लिखा रहता है कि देवेंद्र की माँ कल्याणी को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेती हैं और साथ ही जेलर कल्याणी को देवेंद्र के घर भेजने का इंतज़ाम भी करते हैं और उसे जेल के वार्डन के साथ रेलवे स्टेशन तक पहुंचा देते हैं और फिर वहां उनकी मुलाकात होती है बहुत बीमार विकास से। और फिर विकास का साथी उसे बताता है कि जब पार्टी का हुक्म मिला तो उसे एक पुलिस अफसर के रिश्तेदार से मजबूरन शादी करनी पड़ी, तो ऐसे में विकास ने देश प्रेम की खातिर अपने प्रेम की आहुति दे दी और ये सब सुनकर अंत में कल्याणी स्टीमर पर बैठकर विकास के साथ चली जाती है। तो दोस्तों ये थी कहानी इस फिल्म की, फिल्म बंदनी की, और बंदनी फिल्म में बहुत ही बेहतरीन कुछ तराने भी हैं, तो उनमें से एक तराना लता मंगेशकर की आवाज़ में आप सभी के लिए।

297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल। और दोस्तों आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम उर्वशी, जिसे लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त और होस्ट देविका। और उर्वशी के अंतर्गत आज का सेगमेंट यानी कि एक ही फिल्म से में हम बातें कर रहे हैं, फिल्म वंदिनी की। वंदिनी फिल्म जो है, इस फिल्म को बहुत सारे अवार्ड्स मिले। आपको बता दें कि जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि फिल्म फेयर पुरस्कारों से इस फिल्म को नवाजा गया था और बहुत सारे फिल्म फेयर अवार्ड्स इसे मिले थे। तो इस फिल्म को तकरीबन 6 फिल्म फेयर अवार्ड मिले और साथ ही राष्ट्रीय पुरस्कार यानी कि नेशनल फिल्म अवार्ड भी इस फिल्म को मिला था। तो आपको बता दें कौन कौन से पुरस्कार किस श्रेणी में मिले थे। तो दोस्तों फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म के लिए मिला था वो तो मिला ही था इस फिल्म को, फिल्म फेयर पुरस्कार के रूप में विमल रॉय को मिला था। और फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में नूतन को इस फिल्म के लिए नवाजा गया था। साथ ही फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार विमल रॉय को इस फिल्म के लिए नवाजा गया। साथ ही फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ छायाकार का अवार्ड मिला था कमल बोस को। और साथ ही फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ ध्वनि निर्देशन का अवार्ड मिला डी बिलमोरिया को। और साथ ही फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ कहानी का पुरस्कार मिला जरा संध को, क्योंकि ये जो फिल्म है इस फिल्म को उन्हीं के नॉवल पर बनाया गया था। तो दोस्तों फिलहाल आपको बता दें कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी इस फिल्म को मिला था, सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में ये फिल्म जो है उस समय प्रदर्शित की गई थी। तो इस फिल्म के और भी गीत आप सभी के लिए कर रहे हैं इंतजार, आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज़ में पंछी प्यारे।

0: दोस्तों फिलहाल स्टूडियो की घड़ी में जो समय हो रहा है आपसे लेना है विदा। फिल्म बंधनी से आप सभी के लिए पेश है एस डी बर्मन की आवाज में आज के कार्यक्रम का ये अगला तराना। इसे सुनते सुनते दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट देविका को इजाजत। फिर अगले मुलाकात जो होगी आपसे 6:10 पर।
1: ओरे माजी

0: 10%, whereas the minimum relative humidity stood at 62%. There was no rainfall recorded, and there is no weather warning for the fishermen along the West Bengal coast. Now the weather forecast for Kolkata and its neighbourhood for the next 24 hours. It would be a partly cloudy sky, becoming generally cloudy sky towards the afternoon. Light to moderate rain or thunder shower is very likely to occur towards or after the noon or evening. The maximum temperature is likely to be around 33 degrees Celsius and the minimum temperature will be around 28 degrees Celsius. And that is the end of the weather bulletin. Now let's have a look at the programs to be broadcast on this channel later this evening. At 6:10 p.m. from our station, you will listen to Hindi program. At 7 o'clock from Delhi, you will listen to news in Hindi, followed by news in English at 7:05. At 7:10 p.m., you will listen to a mandolin recital from our station by Nilotpal Chakraborty. Listen to our Hindi karikram Darpan at 7:30 p.m. This evening, we will first bring you the segment called Ek Nazar, which will be followed by Phir Chiri Baat. At 8 o'clock, listen to film music, sports news in Bengali at 8:10 p.m. Listen to mixed melodies at 8:15. The Bengali version of the program Spotlight at 8:30 p.m. from our station. At 8:45 from Delhi, you will listen to Samachar Sandhya, followed by news at 9 at 9 o'clock. Listen to the program Spotlight at 9:16 p.m. from Delhi, followed by Money Talk and Manthan at 9:30 p.m. From our station at 10 o'clock, you will listen to news in Bengali. At 10:10, listen to Vishwadarpan from Delhi, followed by World News at 10:20. From our station again at 10:30 p.m, you will listen to the Western Music Program. Tonight we will bring you the show Jazz Time. At 11:10 from our station, you will listen to Hindi film songs. Those were the programs to be broadcast on this channel later this evening. Now, the announcement regarding the lost person. Ajay Nandan from Police Station Giris Park, Kolkata, informs that Sanchali Nandan, who is mentally disbalanced, aged about 23 years, medium build, height 5 feet 5 inches, color skin fair, mother tongue Bengali, is missing since 6th of July 2026. Information regarding the lost person may be intimated to the officer in charge, Missing Persons Bureau, CID, West Bengal, Bhavani Bhavan, Alipur, Kolkata 700027. And that is the end of the announcement regarding the lost person. This is the Sanchayita channel of Akashvani, Kolkata. And now please stand by for the news from Delhi.
1: Namaskar. Akashvani Samachar ke saath main Jagriti Sharma. विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई. नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी.
2: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए. दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए.
1: जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं.
2: हम लोगों ने कई दफा देखा है कि इस प्रकार के आंख में धूल झोंकने वाली हरकत पाकिस्तान करता रहा है। इससे एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर के नाम पे अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है, उनको एक्शन लेना चाहिए क्योंकि उनको खुद ही पता है कि लोग कहाँ हैं, उनको अरेस्ट करना चाहिए।
1: ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइया पर हमले से संबंधित प्रश्न पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, आम नागरिकों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योगों के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइल से लेकर रडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने कहा है कि खेलों में प्रगति राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मिजोरम में आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्रीमती खड़से ने कहा कि सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। भारत ने HIV एड्स के उपचार के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में सहायता के लिए आज बोत्सवाना को 10 टन एंटी रेट्रोवायरल दवाएं भेजी हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि इससे भारत के ग्लोबल साउथ साझेदारों के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने की देश की प्रतिबद्धता का पता चलता है। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं और 13वीं JPSC परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 18 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस आदेश के बाद याचिकाकर्ताओं और इन परीक्षाओं में चयनित कर्मचारियों को संबंधित पदों पर बने रहने की अनुमति दी गई, जिनकी नियुक्तियां सरकारी अधिसूचना से प्रभावित हुई थी। केरलम के बिजली मंत्री सनी जोसेफ ने कहा है कि राज्य में बिजली की अत्यधिक कमी को देखते हुए सरकार उच्च दरों पर बिजली खरीदने पर विचार कर रही है। उन्होंने बिजली कटौती की समस्या के तुरंत समाधान का भरोसा दिलाया। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता वी मुरलीधरन ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि बिजली कटौती से जनता त्रस्त है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स आज 778 अंक की गिरावट के साथ 74,004 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 280 अंक गिरकर 23,119 पर बंद हुआ। भारत और अफगानिस्तान के बीच 2020 क्रिकेट मैच आज शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। पहले मैच में 7 विकेट से जीत दर्ज कर भारत 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। तीसरा मैच बृहस्पतिवार को दिल्ली में ही होगा। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, दिल्ली, कच्छ, दक्षिण आंतरिक, कर्नाटक, पुदुचेरी, केरलम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने मछुआरों को कल तक अरब सागर में और शनिवार तक दक्षिण पश्चिम अरब सागर के पश्चिम मध्य अरब सागर से सटे कुछ हिस्सों में न जाने की सलाह दी है। शनिवार तक बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में भी समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रही हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल। और दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करते हुए मैं आपके साथ हूं, आपके दोस्त और होस्ट देविका। फिलहाल आप सभी को बता दें, ये कार्यक्रम और चैनल आप न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर सुन सकते हैं। और प्रस्तुत है आप सभी के लिए आज का विशेष ये जो कार्यक्रम है, यानी कि वार्ता। दोस्तों, आज मोबाइल फ़ोन हो, चाहे लैपटॉप या फिर टीवी हो या फिर कोई भी स्क्रीन, आप देख सकते हैं ओटीटी पर विभिन्न प्रकार के जो फिल्म्स हैं या फिर सीरियल्स या फिर वेब सीरीज़, सब कुछ हम देख सकते हैं और बहुत ही इजीली अवेलेबल है। लेकिन जब बात हो पुराने ज़माने की, तो ऐसे में हमें सिर्फ एक नाम याद आता है और वो नाम है दूरदर्शन का। दूरदर्शन से ओटीटी तक का सफर है आज का हमारा विषय, क्योंकि आज है एक विशेष दिवस। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे दूरदर्शन से ओटीटी तक के सफर के विषय में। लेकिन दूरदर्शन जो है, दूरदर्शन दिवस है आज, ये आज के दिन की खासियत है और इसी वजह से इस विषय को चुना गया है। दोस्तों, कल्पना कीजिए उस दौर की जब घर में टीवी का होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हुआ करता था। कई बार बच्चे टीवी ना होने की वजह से पड़ोसी के घर में पड़े टीवी को दीवारों से कान लगाकर सुनते थे, और कई बार कुछ सीरियल्स, कुछ जो फिल्म है, उन्हें देखने के लिए सब जमा हो जाते थे शनि रविवार की दोपहर या फिर शाम को अपने आसपास के किसी ऐसे घर में जिस घर में था टीवी। शाम होते ही परिवार के लोग अपने सारे काम काज समेट कर टीवी के सामने बैठ जाते थे और टीवी पर चैनल भी गिनती के ही थे। और ऐसे में उस समय जो खास एक ऑप्शन था, या यूँ कह सकते हैं एक खास चैनल था, जिससे लोगों का एक ऐसा जुड़ाव हो गया जिसने टीवी के क्षेत्र में एक ऐसी क्रांति लाई जिसके बाद एंटरटेनमेंट की दुनिया ही अपने आप में बदल गई। तो दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ दूरदर्शन की। और एक स्क्रीन के सामने पूरा परिवार जब बैठकर दूरदर्शन में भारतीय टेलीविज़न की दुनिया का जो कुछ भी उस स्क्रीन पर नज़र आ रहा था उसे देखता था, तो ऐसा लगता था मानो कि यही स्वर्ग के समान है। आज भले ही हाथ में स्मार्टफोन हो, इंटरनेट हो, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, बहुत सारे ऑप्शंस हो, लेकिन फिर भी जो उस समय के टीवी देखने की जो क्रेज़ थी, या फिर यूँ कह सकते हैं कि उस समय जो टीवी पर अपने अपनों के साथ बैठकर सीरियल या फिर फिल्म देखने का जो क्रेज़ था, वो था अपने आप में बेहद अलग। दोस्तों, दूरदर्शन से ओटीटी तक का ये जो सफ़र है, ये केवल तकनीकी रूप से हमारे देश में जो है क्रांति आने का एक कहानी नहीं है, बल्कि साथ ही बदलते हुए भारत, बदलती हुई जीवन शैली, बदलती हुई दर्शक की संस्कृति की कहानी भी है। दूरदर्शन भारतीय टेलीविज़न का पहला अध्याय के रूप में जाना जाता है। और दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में टेलीविज़न के प्रसारण की शुरुआत 1959 में प्रायोगिक तौर पर हुई थी। धीरे धीरे टेलीविज़न देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचा और दूरदर्शन भारतीय जनजीवन का एक ऐसा अभिन्न हिस्सा बन गया जिसके बिना दिन की शुरुआत का होना ही एकदम नागवार सा लगता था। दोस्तों, आपको बता दें, दूरदर्शन का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं था, शिक्षा, सूचना और सामाजिक जागरूकता भी उसकी महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। और उसके बाद टीवी पर आने वाले जो कार्यक्रम थे, उसे पूरे परिवार को बहुत फायदा भी होता था और उनका मनोरंजन भी होता था। समाचार से लेकर कृषि कार्यक्रमों तक, बच्चों के कार्यक्रमों से लेकर धारावाहिकों तक, दूरदर्शन ने भारतीय समाज के अलग अलग वर्गों को जोड़ने का काम किया। दोस्तों, फिर आया वो दौर जब टेलीविज़न कार्यक्रमों ने पूरे देश को एक साथ टीवी के सामने बैठा दिया। और उस समय हम सभी बैठकर देखते थे रामायण और महाभारत जैसे ऐसे रोचक कार्यक्रम जिन्हें देखकर
सभी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। इन धारावाहिकों के साथ टेलीविजन को एक केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं मिला, बल्कि उन्हें भारतीय सामाजिक जीवन का हिस्सा भी बना दिया गया। रविवार की सुबह सड़कों पर सन्नाटा हो जाता था और घरों में टीवी के सामने बैठे परिवार दृश्य के को अगर आज भी हम इमेजिन करें तो ये पूरी तरह से हमारी स्मृति में कहीं ना कहीं बसा हुआ है। तो दोस्तों, जब टीवी ने घर को बदलना शुरू किया तो 1980 और 90 के दशक में टेलीविजन तेजी से भारतीय घरों तक पहुंचने लगा। रंगीन टीवी का दौर आया, टीवी सेट घर की बैठक का महत्वपूर्ण हिस्सा भी बन गया और दूरदर्शन पर आने वाले कार्यक्रमों का इंतजार परिवार के सभी लोग मिलकर करने लगे और फिर भारतीय टेलीविजन की दुनिया में एक बड़ा बदलाव भी आया। और उस बदलाव की अगर बात की जाए तो ये जो था वो सैटेलाइट चैनलों का दौर शुरू हो गया और दर्शकों के पास अब धीरे धीरे विकल्प भले बढ़ने लगे, लेकिन मनोरंजन के साधन अधिक होने के बावजूद भी दूरदर्शन ने अपनी क्षमता को, अपनी जो एक तरह से अपनी पर्सनैलिटी है उसे बनाकर रखा। 1990 के दशक में केवल सैटेलाइट टीवी पर विस्तार ने मनोरंजन की दुनिया को पूरी तरह से धीरे धीरे बदलना शुरू कर दिया और फिर दर्शक केवल वही नहीं खोजते थे जो एक दो चैनल्स तक सीमित हो, बल्कि वो धीरे धीरे एक्सपेंड करता गया। केबल की वजह से ढेर सारे चैनल्स आने लगे और फिर धीरे धीरे जो है अलग अलग सीरियल्स और अलग अलग डेवलपमेंट्स जो हैं वो टेलीविजन के क्षेत्र में होने लगे। 21वीं सदी के साथ इंटरनेट भारतीय जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया और शुरुआत में इंटरनेट की गति भले धीमी थी लेकिन वीडियो देखना आसान बिल्कुल भी नहीं था उस समय, लेकिन फिर भी इसके प्रति बहुत सारे झुकाव रुझान जो है वो हमारे देखने को मिलने लगे। फिर धीरे धीरे ब्रॉडबैंड और फिर मोबाइल इंटरनेट और साथ ही उसके बाद 4G 5G जैसे जो नेटवर्क स्पीड है इनकी वजह से मनोरंजन के क्षेत्र में बदलाव आने लगा और फिर धीरे धीरे स्क्रीन तक ही सीमित नहीं रहा मनोरंजन, वो धीरे धीरे मोबाइल और कंप्यूटर के साथ साथ जितने भी स्क्रीन हमारे आसपास थे उन तक मौजूद होने लगा। साथ ही वीडियो प्लेटफॉर्म भी लोकप्रिय होने लगे और OTT के रूप में आया हम सभी के सामने एक क्रांति के तरह। और आपको बता दें कि OTT यानी ओवर द टॉप इसे कहा जाता है और इसका शॉर्ट फॉर्म है OTT, जिसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में भी जाना जाता है। और यहाँ इंटरनेट के माध्यम से फिल्में, धारावाहिक, वेब सीरीज, डॉक्यूमेंट्री और दूसरे वीडियो कंटेंट आसानी से देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों, एक तरह से हम कह सकते हैं कि दूरदर्शन का दशक, या यूं कह सकते हैं दूरदर्शन का जो दौर था वो बेहद खास था अपने आप में। और धीरे धीरे, जैसे कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट हम सभी जानते हैं, तो धीरे धीरे सारी चीजें बदलने लगी और फिर धीरे धीरे ये जो दूरदर्शन एक चैनल से बढ़कर आगे OTT तक का सफर तय कर चुका है। तो फिलहाल आप सभी को आज के विशेष दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दूरदर्शन दिवस के इस उपलक्ष्य पर आप सुन रहे थे एक विशेष ये वार्ता और फिलहाल स्टूडियो की घड़ी में जो समय हो रहा है ये इशारा कर रहा है कि आज बस इतना ही। चलते चलते आपको बता दें कि फिर से मुलाकात आपसे होगी इस संस्कृत में समाचार के ब्रेक के बाद। गुलगुलशन लेकर हाजिर रहूंगी मैं आपके साथ। फिलहाल कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। नवदिल्ल्या प्रतिपादितं यत् खाती प्रदेशे वाणिज्यिक पोतानां सामुद्रिक यात्रिणां नागरिकाणां तथा नागरिक मूल संरचनायाः लक्ष्यकरणं भारताय अस्वीकार्यमस्ति। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः रक्षाक्षेत्रे आत्मनिर्भरतां प्राप्तुं सशस्त्र बलानां रक्षानुसंधान विकास संघटन संस्थायाः तथा उद्योग जगतः मध्ये अधिक सहकारस्य आह्वानं कृतवान्। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश हरियाणा राजस्थान दिल्ली चेत्येतेषां मुख्यमंत्रिभिः यमुना नद्याः पुनरुद्धाराय किशाऊ बहुउद्देशीय बंध परियोजना संबद्धे संधौ हस्ताक्षराणि कृतानि। अमेरिकायाः न्यायालयेन वैदेशिक छात्राणां वार्ताहराणां च कृते ट्रंप प्रशासनेन

वेल फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मिश्रित गीत संगीत के कार्यक्रम कुल गुलशन में। स्टूडियो की घड़ी में समय 6:37 और 22 सेकंड। आप सुन रही हैं कार्यक्रम गुल गुलशन देविका के साथ 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी कोलकाता के संचेता चैनल पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
1: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
0: जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं।
1: हम लोगों ने कई दफा देखा है कि इस प्रकार का आंख में धूल झोंकने वाली हरकत पाकिस्तान करता रहा है। इससे एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर के नाम पे अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है, उनको एक्शन लेना चाहिए क्योंकि उनको खुद ही पता है कि लोग कहां हैं, उनको अरेस्ट करना चाहिए।
0: ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइया पर हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, लोगों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। देश के 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आज यमुना नदी का अवैध

0: तरल प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए किशाऊ बहुउद्देश्यीय परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली शामिल हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने विश्वास व्यक्त किया कि यह परियोजना पूरी होने पर इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय बन जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किशाऊ परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया है। केंद्र सरकार लगभग 90% और 10% राज्य सरकारें खर्च करेंगी। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पानी से जुड़ा यह 10वां विवाद है जो अब सुलझने वाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योग के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइल से लेकर रडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम तथा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने आज राजस्थान के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में डिजिटल लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। 16 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत से ये स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जाएंगे। सरकार जनजातीय विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत और अमेरिका के बीच 22वां संयुक्त सैन्य अभ्यास समारोह आज उत्तराखंड में आयोजित किया गया। ये सैन्य अभ्यास उत्तराखंड के औली और राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में एक साथ आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं की संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स आज 778 अंक की गिरावट के साथ 74,004 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 280 अंक गिरकर 23,119 पर बंद हुआ। दिल्ली में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। पहले मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया था। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, दिल्ली, कच्छ, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पुदुचेरी, केरलम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने मछुआरों को कल तक अरब सागर में और शनिवार तक दक्षिण पश्चिमी अरब सागर में न जाने की सलाह दी है। शनिवार तक बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में भी समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। India today termed the targeting of commercial shipping, seafarers, civilians and civilian infrastructure in West Asia region as completely unacceptable following the attack on a vessel off the coast of Oman. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal stated this while replying to a query during a media briefing in New Delhi today.
2: This attack happened off the coast of Oman. It was a Panama flagged ship on which we had 14 Indian nationals or seafarers, of which 13 have been rescued, and we deeply thank the Omani authorities for rescuing our nationals. One Indian national is missing. Search and rescue operations continue with the help of the Omani authorities, and our embassy is in close touch. We urge that free and safe navigation and flow of commerce through international waterways in the region be restored at the earliest.
1: On talks between Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping on the sidelines of the 18th BRICS summit held in New Delhi recently, Mr. Jaiswal said several issues were discussed during the meeting. He said the Prime Minister referred to India's concerns and underlined that both sides should show sensitivity to each other's core concerns.
2: Several issues came up during the discussions. Prime Minister referred to Indian concerns as well and underlined those that both sides should show sensitivity to each other's core concerns and be guided by the three mutuals: mutual respect, mutual interest and mutual sensitivity.
1: Of the 70 lakh rupee reward announced by Pakistan on Jaish-e-Mohammed chief Masood Azhar, the MEA spokesperson said

स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 7:31। आप सुन रहे हैं 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी कोलकाता का संचिकता चैनल। और दोस्तों, आप सभी को बता दें कि एक नज़र के अंतर्गत सबसे पहले आप सभी का स्वागत करते हुए इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक नज़र के पहले जो आप सभी के लिए बता दूं कि कौन कौन सी चीज़ें आज हमारे इस कार्यक्रम में रहेंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें, एक नज़र के अंतर्गत आज हम दो विषयों पर करेंगे बातें। पहला होगा दूरदर्शन दिवस, क्योंकि आज है दूरदर्शन दिवस, और साथ ही साथ हम बातें करेंगे अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पर भी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दर्पण, दैनिक हिंदी पत्रिका कार्यक्रम दर्पण के अंतर्गत सबसे पहले प्रस्तुत है एक नज़र। दोस्तों, एक ऐसा दौर था जब घर में टेलीविज़न का आना किसी उत्सव से कम नहीं होता था, लेकिन फिर स्क्रीन टाइम पर जब स्क्रीन पर उभरता दूरदर्शन का लोगो लोग देखते थे और उन्हें सिग्नेचर ट्यून जो है वो जब सुनाई देती थी तो पूरा परिवार बैठ जाता था एक साथ टीवी देखने। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हर वर्ष 15 सितंबर को भारत में दूरदर्शन दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर 1959 को भारत में टेलीविजन प्रसारण की शुरुआत हुई थी, और शुरुआत भले ही एक छोटे से प्रयोग के रूप में हुई थी, लेकिन आगे चलकर दूरदर्शन देश के सबसे प्रभावशाली जनसंचार माध्यमों में से एक बन गया। और दोस्तों, आपको बता दें, शुरुआती दिनों में टेलीविजन प्रसारण का दायरा बहुत सीमित था, कार्यक्रम भी सीमित समय के लिए प्रसारित होते थे, लेकिन धीरे धीरे दूरदर्शन ने देश के करोड़ों लोगों तक शिक्षा, सूचना और मनोरंजन पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूरदर्शन का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं था, उसमें समाज को जानकारी देना, शिक्षित करना और जागरूक करना भी उसका काम था। दोस्तों, आज 15 सितंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन का उद्देश्य है लोकतंत्र के महत्व पर लोगों के मन में उनके इसके प्रति जागरूकता बढ़ाना, लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करना और प्रयासों से इसे प्रोत्साहित भी करना। लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें सत्ता का केंद्र केवल सरकार नहीं बल्कि जनता होती है, और लोकतंत्र हमें अधिकार देता है अपनी बात कहने का अधिकार, अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार, समानता का अधिकार और अपने समाज तथा देश के भविष्य में भागीदारी करने का अधिकार।

दोस्तों स्टूडियो की घड़ी में फिलहाल जो समय है वो कह रहा है 7:33। आप सुन रहे हैं 297.6 मीटर यानी 1008 किलो हर्ट्स पर आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल। और दोस्तों आपको बता दें कि फिलहाल आप सभी के लिए एक विशेष सूचना है और इस सूचना की शुरुआत करते हैं। दो विशेष सूचनाएं हैं, एक सूचना अभी आप सभी के लिए। ये सूचना है 138वीं डाक अदालत एवं पेंशन अदालत के विषय में। मुख्य पोस्टमास्टर जनरल पश्चिम बंगाल सर्किल की अध्यक्षता में दिनांक 28/10/2026 को अपराह्न 12:30 से मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्किल योगायोग भवन P36 सीआर एवेन्यू कोलकाता 7000012 में गूगल मीट वीडियो सम्मेलन के माध्यम से 138वीं डाक अदालत का एवं पेंशन अदालत को आयोजित किया जाएगा। इस अदालत में पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के डाक घरों में पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगियों की डाक सेवाओं और पेंशन दावे से संबंधित शिकायतों का निपटान किया जाएगा। शिकायत पत्र में संदर्भ संख्या, विभिन्न डाक प्राधिकारियों से पूर्व में प्राप्त पत्रों की तारीख एवं शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर सहित पूर्ण ब्यौरे का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। शिकायत श्री SC दास, सहायक निदेशक डाक सेवा ग्राहक संतुष्टि, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्किल P36 CR एवेन्यू कोलकाता 7001012 के नाम से भेजी जाए। और ये डाक या ईमेल आईडी cpmg_wb@indiapost.gov.in के साथ साथ adpgcowb@gmail.com या pg.wb@indiapost.gov.in के माध्यम से दिनांक 30/9/2026 तक या उसके पूर्व पहुंच जानी चाहिए। शिकायतकर्ता से अनुरोध है कि वे उपरोक्त निर्धारित तारीख एवं समय पर गूगल मीट वीडियो सम्मेलन के जरिए डाक अदालत एवं पेंशन अदालत में उपस्थित हों। किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए सहायक निदेशक डाक सेवा ग्राहक संतुष्टि से दूरभाष संख्या 0332212050 या 0332212 0612 अथवा 0332212

500 पर संपर्क किया जा सकता है। डाक अदालत पेंशन अदालत के आवेदनों ईमेल पर डाक अदालत पेंशन अदालत शब्द लिखा होना चाहिए। विशेष रूप से ध्यान दें कि डाक एवं पेंशन अदालत में उत्तराधिकार आदि से संबंधित विधिक मामलों एवं नीतिगत मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। सूचना समाप्त हुई।

स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 7:43 और 28 सेकंड। आप सुन रहे 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्स पर आकाशवाणी कोलकाता का संक्षेपता चैनल, और इस कार्यक्रम और चैनल को आप न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी सुन सकते हैं। फिलहाल दोस्तों, आप सभी के लिए डाक अदालत संबंधी एक विशेष सूचना। तो दोस्तों, इस सूचना पर कृपया ध्यान दें। अधीक्षक RMS SB मंडल की अध्यक्षता में RMS SB मंडल की डाक अदालत का आयोजन दिनांक 7/10/2026 को 12 बजे अधीक्षक RMS SB मंडल कार्यालय 2 MG रोड हावड़ा, 4th मंजिल हावड़ा प्रधान डाकघर भवन हावड़ा 7111-01 में गूगल मीट वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया जाएगा। इस डाक अदालत में RMS SB मंडल से संबंधित RMS सेवाओं की शिकायतों समस्याओं पर विचार किया जाएगा। ग्राहक अपने सहायक दस्तावेजों सहित अपनी शिकायतें डाक द्वारा व्यक्तिगत रूप से अथवा ईमेल पर rmssbdn@gmail.com अथवा पर भेज सकते हैं, और इस ईमेल में विषय एप्लीकेशन फॉर डाक अदालत अवश्य लिखें के माध्यम से अधीक्षक RMS SB मंडल हावड़ा 7111-01 को इस प्रकार भेज सकते हैं कि वे दिनांक 28/9/2026 तक इस कार्यालय में प्राप्त हो जाएं। शिकायतकर्ता अपना ईमेल आईडी और एवं व्हाट्सएप नंबर अनिवार्य रूप से प्रदान करें। इच्छुक ग्राहक को शिकायतकर्ताओं से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर गूगल मीट वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डाक अदालत में समय पर उपस्थित हों। किसी भी अन्य स्पष्टीकरण हेतु सहायक अधीक्षक मुख्यालय से दूरभाष संख्या 0332641-5941 पर संपर्क किया जा सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंस का लिंक यथा समय साझा कर दिया जाएगा। नोट करें, कानूनी मामलों जैसे उत्तराधिकार आदि और नीतिगत मामलों से संबंधित प्रकरणों पर उपर्युक्त डाक अदालत में विचार नहीं किया जाएगा। सूचना समाप्त हुई।

0: वेल फ्रेंड्स, स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 7:49:30। आज हम बातें करेंगे फिरछिड़ी बात के अंतर्गत बुलंदियों की। और दोस्तों, आपको बता दें, जब बुलंदियों की बात होती है तो इसमें हम कहीं ना कहीं अपने आप को, जब हम किसी काम में सक्सेस पाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम 7वें आसमान पर पहुँच गए हैं। तो ऐसा ही एक गीत आप सुनेंगे कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की आवाज़ में। फिल्म का नाम खामोशी, द म्यूजिकल।
1: अगर

वेल फ्रेंड्स, बुलंदियों की बात हो तो आशाओं की बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। के साथ सलीम मर्चेंट की आवाज में आप सुनेंगे आशाएं। सुनते सुनते दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट देविका को इजाजत। और दोस्तों, आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे अगला कार्यक्रम, और फिलहाल कार्यक्रम दर्पण के अंतर्गत आप सुनेंगे अंतिम गीत फिल्म इकबाल से।

0: দিল্লি কেন্দ্র থেকে সমাচার সন্ধ্যা একটু পরেই।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत ने कहा, चीन के साथ मुख्य चिंताओं को दूर करने में आपसी सम्मान, हित और संवेदनशीलता को मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। भारत ने कहा, खाड़ी क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाना अस्वीकार्य, लाल सागर में बिगड़ती स्थिति पर चिंता व्यक्त की। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया, लोगों से व्यापारियों को 2,000 रुपए से अधिक के यूपीआई लेन देन पर लगने वाला 0.4% शुल्क व्यापारियों पर लगेगा। लोगों के बीच होने वाले लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। हौसी हमले की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की और दिल्ली में भारत तथा अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
2: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और 3 पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि भारत और रूस के बीच ऊर्जा सहयोग द्विपक्षीय साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। उन्होंने कहा कि दोनों देश परमाणु क्षेत्र में भी लंबे समय से सहयोग कर रहे हैं। सम्मेलन से अलग विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सऊदी अरब के विदेश मंत्री की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों पक्षों ने हौसी विद्रोहियों के मुद्दे पर विचार विमर्श किया। भारत ने सऊदी अरब पर हाल के हौसी हमले की निंदा की। भारत लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती स्थिति से बेहद चिंतित है। श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं।
2: 50 के लगभग आउटकम्स हैं अलग अलग क्षेत्रों में और ये सब विकास आधारित आउटकम्स हैं और इन सभी पे लोगों के लिए अवसर पैदा होंगे। जब अर्बन मोबिलिटी की बात कही है, वहाँ भी हमारे देश में कई एक और ब्रिक्स देश में ई मोबिलिटी पर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काफी काम हो रहा है। तो ब्रिक्स देश आपस में अपने अपने उनके जो उनका एक्सपीरियंस है उसको साझा कर सकते हैं और फिर ये एक प्रस्ताव है और इस प्रस्ताव पर लोगों को अब ध्यान देना है और उसको देखना है किस प्रकार से इसको आगे ले जाया जाए।
1: जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख पाकिस्तानी रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि

0: तरह के दिखावे नए नहीं हैं।
1: हम लोगों ने कई दफा देखा है कि इस प्रकार का आंख में धूल झोंकने वाली हरकत पाकिस्तान करता रहा है। इससे एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर के नाम पे अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है, उनको एक्शन लेना चाहिए क्योंकि उनको खुद ही पता है कि लोग कहाँ हैं, उनको अरेस्ट करना चाहिए।
0: ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइया पर हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, लोगों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योगों के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइल से लेकर रडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।
2: आज 2026 में DRDO ने मिसाइल से लेकर रडार्स तक, कम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन्स तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी कैपेबिलिटीज साबित की है। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए DRDO आज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इस सच्चाई को ही कोई नकार नहीं सकता है।
0: देश के 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आज यमुना नदी का अविरल प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली शामिल हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि श्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पानी से जुड़ा ये 10वां विवाद है जो अब सुलझने वाला है। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस समझौते का स्वागत किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल ने कहा कि एक ऐतिहासिक समझौता है।
3: आज एक बहुत बड़ा समझौता 6 राज्यों के बीच में हुआ है, जिसका फायदा सिंचाई का भी होगा, पीने के पानी का भी होगा, पर्यावरण की दृष्टि से भी होगा। ये समझौता आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार देश के अंदर जल बंटवारे को लेकर के लंबित इन प्रकरणों का समाधान हो रहा है।
0: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के प्रयासों से ये समझौता संभव हो पाया है।
4: किसाऊ परियोजना हस्ताक्षर हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की पहल और सक्रिय प्रयासों से ही कई वर्षों से लंबित इस विषय पर राज्यों के बीच आज सहमति बनाने का रास्ता साफ हुआ है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच UPI से कितनी भी राशि के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए ₹2000 तक का लेन देन निःशुल्क रहेगा। इस प्रकार व्यक्तियों से व्यापारियों को लगभग 96% लेन देन अप्रभावित रहेगा। ₹2000 से ज्यादा के व्यक्ति से व्यवसायी लेन देन पर 0.4% का मामूली MDR लगेगा, जबकि ₹75000 और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए MDR की सीमा ₹300 प्रति लेन देन होगी। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यवसायी या कारोबारी का ये शुल्क UPI से भुगतान करने वाले ग्राहकों पर न लगाएं। देश के माल निर्यात में इस वर्ष अगस्त में 26.12% की वृद्धि दर्ज की गई है और ये $43.81 अरब तक पहुंच गया। पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में उछाल से माल निर्यात में ये वृद्धि दर्ज हुई है। सोने के आयात में गिरावट से व्यापार घाटा कम होकर 5 महीने के निचले स्तर $26.86 अरब पर आ गया। जून 2022 के बाद इस वर्ष अगस्त माह में निर्यात वृद्धि सबसे अधिक 30.12% रही। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जैव E3 नीति और जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए भारत पादप

0: और मानव जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में एक साथ प्रगति देख रहा है। नई दिल्ली में डॉक्टर सिंह ने कहा कि आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी को ऐसी तकनीकों में परिवर्तित किया जाना चाहिए जो कृषि संबंधी वास्तविक चुनौतियों का समाधान कर सके और किसानों को लाभ पहुंचा सके। खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने कहा है कि खेलों में प्रगति राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मिजोरम में आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्रीमती खड़से ने ये बात कही।
1: We need to develop sports infrastructure.
2: हमें खेलों के बुनियादी ढांचे के साथ साथ युवाओं के विकास पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारे युवा ही विकसित भारत का भविष्य है। केंद्र सरकार लगातार राष्ट्र निर्माण के लिए युवाओं को तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं।
1: यूथ फॉर्मेशन बिल्डिंग।
0: अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम तथा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने आज राजस्थान के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में डिजिटल लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। 16 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत से ये स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जाएंगे। नई दिल्ली में जनजातीय कार्य मंत्रालय की सचिव रंजना चोपड़ा ने कहा कि इन विद्यालयों के विद्यार्थी IIT और नीट प्रवेश परीक्षा में बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं।
3: इस साल जितने भी हमारे 500 से ऊपर स्कूल हमारे ऑपरेशनल हैं, उनमें से 450 से अधिक बच्चे IIT JEE एडवांस क्वालिफाई किए हैं और 350 से अधिक बच्चे नीट करे हैं। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो बच्चे एडवांस क्लियर करे हैं और नीट क्लियर करे हैं, वो जरूर किसी न किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। हौसी हमले की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से सऊदी अरब और प्रमुख क्षेत्रीय समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नए चेतावनी हमले और सैन्य झड़पों की खबरें लगातार मिल रही हैं। सऊदी अरब में आज मक्का, जेद्दा और तैफ में बहुत कम समय के लिए आपातकालीन चेतावनी जारी की गई। उधर यमन के हौसी विद्रोहियों ने आज दावा किया कि सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों के तैज प्रांत पर हमले में 3 लोग मारे गए हैं। यमन में नए सिरे से शुरू हुई इस लड़ाई से नागरिकों की जान खतरे में है और लाल सागर से होकर गुजरने वाले जहाजों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन ने वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका की सराहना की है। श्री ग्रीन ने क्वाड संगठन की बढ़ती सक्रियता पर बल दिया। श्री ग्रीन ने भारत के राजनयिक नेतृत्व, विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की भूमिका की प्रशंसा की। भारत ने HIV/AIDS के उपचार के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में सहायता के लिए आज बोत्सवाना को 10 टन एंटी रेट्रोवायरल दवाएं भेजी हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि इससे भारत के ग्लोबल साउथ साझेदारों के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने की देश की प्रतिबद्धता का पता चलता है। उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने रैपिडो संचालित करने वाली कंपनी रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर गुमराह करने वाले विज्ञापन के लिए 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना गलत ट्रेड प्रैक्टिस, गलत अनुबंध और डार्क पैटर्न के लिए लगाया गया है। इसमें राइड कन्फर्म होने से पहले राइडर्स से ज्यादा पैसे लेने के लिए कहा जाता था। केरलम के बिजली मंत्री सनी जोसेफ ने कहा है कि राज्य में बिजली की अत्यधिक कमी को देखते हुए सरकार उच्च दरों पर बिजली खरीदने पर विचार कर रही है। उन्होंने बिजली कटौती की समस्या के तुरंत समाधान का भरोसा दिलाया। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता वी मुरलीधरन ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि बिजली कटौती से जनता त्रस्त है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
5: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 74,004 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 23,119 पर स्थिर हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 41 पैसे कमजोर होकर 95.96 रुपए पर बंद हुआ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नुआखाई के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा कि ये पर्व किसान, फसल और भाईचारे का उत्सव है और ये सद्भाव की भावना को मजबूत करता है। ओडिशा के प्रमुख पर्व नुआखाई का अर्थ है नया खाना। इसे धान की नई फसल आने पर मनाया जाता है।

0: दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 19वें ओवर में 7 विकेट पर 148 रन बना लिए हैं। पहले मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया था। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मुकाबला बृहस्पतिवार को दिल्ली में ही खेला जाएगा। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिम बंगाल के हिमालय क्षेत्र, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। अगले 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में गरज चमक और तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और सिक्किम समेत पूर्वोत्तर भारत में भी कल तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा, चीन के साथ मुख्य चिंताओं को दूर करने में आपसी सम्मान, हित और संवेदनशीलता को मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। भारत ने कहा, खाड़ी क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाना अस्वीकार्य। लाल सागर में बिगड़ती स्थिति पर चिंता व्यक्त की। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया, लोगों से व्यापारियों को 2,000 रुपये से अधिक के UPI लेन देन पर लगने वाला 0.4% शुल्क व्यापारियों पर लगेगा। लोगों के बीच होने वाले लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। हौसी हमले के अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की और दिल्ली में भारत तथा अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच जारी है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. New Delhi says core concerns of India-China relations should be guided by mutual respect, interest and sensitivity. India says targeting of commercial ships and seafarers in Gulf region is unacceptable, expresses concern on escalating situation in Red Sea. Finance Ministry clarifies charges of 0.4% to be levied on person-to-merchant UPI transactions above 2,000 rupee will be paid by merchants. No charges on person-to-person transactions. Saudi Arabia activates warning in Mecca amid Houthi attack speculations. And in men's cricket, second T20 international between hosts Afghanistan and India underway in Delhi. And now the news in detail. The Ministry of External Affairs has said several issues were discussed during the meeting between Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping on the sidelines of the 18th BRICS summit held in New Delhi recently. Addressing media in New Delhi this evening, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said the Prime Minister referred to India's concerns and underlined that both sides should show sensitivity to each other's core concerns.
2: Several issues came up during the discussions. Prime Minister referred to Indian concerns as well and underlined those that both sides should show sensitivity to each other's core concerns and be guided by the three mutuals, mutual respect, mutual interest and mutual sensitivity.
1: The spokesperson said External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar held a meeting with the Saudi Foreign Minister on the sidelines of the BRICS summit. During the meeting, they discussed regional and international developments. Mr. Jaiswal said that the issue of the Houthis was also discussed. There was recently an attack on Saudi Arabia, which India has condemned. Mr. Jaiswal said New Delhi is deeply concerned with the escalation in the situation in the Red Sea region.
2: We are deeply concerned with the escalation in the situation that we see in the Red Sea region. We have condemned the attack on the Saudi sovereign territory, including on civilian infrastructure and economic assets. Such attacks, they undermine regional stability and threaten freedom of navigation through the Bab el-Mandeb. These are unacceptable to us. We hope that there is early restoration of peace and stability in the region. Having said that, let me say that we continue to receive energy supplies from that part of the world.
1: On the attack on commercial vessel MTL Gaia off the coast of Oman, Mr. Jaiswal said targeting commercial shipping, seafarers,

0: Manthan.
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर जगवीर सिंह और आकाशवाणी संवाददाता प्राची प्रिया।
0: नमस्कार, कार्यक्रम मंथन में आप सबका अभिनंदन। श्रोताओं, आज का विषय है स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर। इस पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित हैं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में वरिष्ठ वैज्ञानिक और सलाहकार डॉक्टर जगवीर सिंह। महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन।
2: बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार आपको
0: करते हुए कि स्वच्छ सागर और सुरक्षित सागर अभियान जो है ये क्या है, मैं चाहूंगी कि आप इस पर प्रकाश डालें।
2: जो अभी हम देख रहे हैं कि कुछ जो इकोलॉजिकल चुनौतियां देखें तो उसमें सागर से संबंधित, ओशन संबंधित काफी बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं हम लोग। और यदि हम जलवायु परिवर्तन का भी देखें तो उसका भी प्रभाव एक पड़ रहा है, वो तो है ही है। साथ में हम लोगों की कुछ जो मानव जनित जो गतिविधियां हैं, विशेष करके प्लास्टिक का अत्यधिक प्रयोग, सिंगल यूज प्लास्टिक का, उससे इकोलॉजिकल एक डिसबैलेंस पैदा हो रहा है। तो इसके लिए अब आवश्यकता है कि हम लोग समुद्र की ओर, जिनको हम समुद्र देवता भी बोलते रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान दें, जिससे कि इकोलॉजिकल बैलेंस में हम सहभागी हो सकें और अपने खुद के हित के लिए बहुत आवश्यक है।
0: महोदय, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान ने 2022 में 75 दिनों और 75 लोकेशन से 17 सितंबर में इसकी शुरुआत की थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। आज इसके विस्तार को अगर हम देखें और जन भागीदारी को अगर हम देखें तो आपके लिहाज से आप इसे कैसा आंकते हैं?
2: बिल्कुल, आपने सही कहा कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने बाकी मंत्रालयों के साथ में मिलकर के 2022 में इसकी शुरुआत की थी, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर। और आपको जानकर हर्ष होगा कि उस समय, जैसा कि 75 वर्ष आजादी के हम लोग मना रहे थे, तो माननीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उनका जो एक रहा मार्गदर्शन, जो एक सोच रही कि एक ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और हम लोग इसको एक दिन की बजाय उसको 75 डेज का हम लोग करें एक्टिविटी। और उसके चलते हुए हम लोगों ने 75 डे लॉन्ग एक एक्टिविटी की थी, जो स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर की शुरुआत हुई। और जो 17 सितंबर को उस समय इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे था, जो कि मैं बताना चाहूंगा आपको कि हर वर्ष तीसरे शनिवार को पड़ता है सितंबर में, ये तो 2022 में जो तीसरा शनिवार था वो 17 सितंबर का था। तो उसी के अनुसार हम लोगों ने 75 डेज लॉन्ग एक्टिविटी की थी, जिसमें हमारे साथ में बाकी मंत्रालय भी शामिल थे, विशेष करके इंडियन कोस्ट गार्ड और साथ में NSS, यूथ अफेयर, ये सभी लोग हमारे साथ में थे और शिपिंग एंड पोर्ट भी हमारे साथ शामिल था। तो वो एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी साबित हुई। और हम बताना चाहेंगे यहाँ पर कि जब ये शुरुआत की थी तो उस समय था कि हम लोग जैसे कि 75 डेज, 75 ईयर ऑफ आजादी और साथ में 75 लोकेशंस एट द कोस्ट, ये हम लोग एक पकड़ में साथ चले थे। और हम लोगों ने अनुरोध किया था बाकी सभी जो हमारे संगठन हैं, जितने भी हैं, जो स्वयंसेवी संगठन हैं, छात्र वर्ग है और यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशंस को भी हमने, इरेस्पेक्ट ऑफ एनी रिलीजन, मैं बात कर रहा हूँ, सभी के साथ हम लोगों ने एक अपील की थी और परिणाम जो हुए बहुत ही उत्साहजनक थे वो।
0: आपने जिन 75 लोकेशंस की बात की है, अलग अलग लोकेशंस, मैं ये मान करके चलती हूँ क्योंकि जगह अलग अलग है तो अलग अलग तरह की वहाँ पर अनुभूतियाँ रही होंगी, तो कैसा रहा हर जगह पर काम करना, किस तरीके से वहाँ पर काम किया गया?
2: मैं बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने जो परिकल्पना की थी, हम लोग जिस काम को लेकर

0: ले थे वो 75 जगह के लिए, 75 कोस्टल लोकेशंस, और एक बहुत ही अच्छी भावना के साथ हम लोग चले थे। और हम लोगों ने अपील की थी, अनुरोध किया था सभी से के सहयोग करें इस काम में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको और हमारे जो श्रोता हैं आकाशवाणी के, उनको बहुत खुशी होगी जानकर के। और जो हमारे साथ शामिल रहे हैं इस कार्य में, मैं उनको बहुत बधाई देते हुए मैं बताना चाहूंगा कि जब हमारे साथ में युवा छात्र, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और संगठन, जो स्वयंसेवी संगठन, साथ में स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशंस, सभी लोग जब जुड़े मंत्रालयों के अलावा, तो 836 स्थानों पर ये एक्टिविटी हुई, जो स्वच्छ सागर स्वच्छ सागर बजाय 75 प्लेसेस के 836 लोकेशंस में हुआ। और उसमें भी आपको जानकर के बहुत खुशी होगी कि हम लोगों की जो कल्पना थी कि हर एक लोकेशन पर 75 हमारे खुद के एम्प्लॉय सरकारी लोग और साथ में बाकी छात्र लोग शामिल होंगे।
1: युवा भागीदारी आप इतनी महत्वपूर्ण क्यों देखते हैं इस परिपेक्ष में, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी।
0: इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2022 से ही हम एक बात देख रहे हैं कि वैसे भी बहुत योगदान रहा है हमेशा कि NSS विशेष करके, और साथ में जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के बाकी जो ब्रांचेज हैं, उसमें वो लोग बढ़ चढ़ के हमारे साथ में आए थे। और अभी तो हमारे साथ में स्काउट्स गाइड भी इसमें जुड़ गए हैं और NCC भी साथ में था। तो उसके चलते हुए एक और साथ में जो और यूनिवर्सिटी कॉलेज जुड़े और जाकर स्वयंसेवी संगठन जुड़े, उसके चलते हुए ये संभव हो पाया कि इतनी सारी जगह पर 836 लोकेशंस में, और वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा 125,000 से ज्यादा लोग भाग उसमें सहभागी हुए। और यदि आप देखें कि बाकी जो था, जैसे कि उसी समय था कि गवर्नमेंट ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर काफी जोर दिया था कि उसको हमको इरेडिकेट करना है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बड़ी मात्रा में वहां से सिंगल यूज प्लास्टिक हटाया गया 2022 में।
1: जी, हम ये सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो बहुत ही एक तरीके से, अगर मैं कहूँ कि ये खतरा है हमारे पूरे मैनकाइंड के लिए, तो ऐसे में समुद्र में जो पहुंचने वाला प्लास्टिक है, हम पढ़ते हैं, जानते हैं, देखते हैं कि वो धीरे धीरे माइक्रो प्लास्टिक में बदल जाता है, जैसा कि आपने शुरुआत में भी बताया। और इसी पर मैं आगे आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि ये जो फूड चेन में अल्टीमेटली ह्यूमन तक आता है, क्योंकि वो जो माइक्रो प्लास्टिक पानी में जो जीव जंतु हैं उन्होंने उसे कंज्यूम किया और फिर वही सी फूड जो है हम तक आ रहा है, तो इस चीज को अगर हम ध्यान में रखते हुए देखें, उस लिहाज से ये अभियान हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण बन जाता है।
0: ये एक आपने बिल्कुल सही कहा है कि माइक्रो प्लास्टिक जो भी अभी अध्ययन हुए हैं कुछ, उसमें वो ह्यूमन बॉडी में पहुंचा हुआ पाया गया है।
1: जी,
0: तो वो वाकई एक बुरी खबर है,
1: बहुत ही बड़ा खतरा
0: है और बुरी खबर है। और आपको याद होगा अच्छी तरह से, सभी हम लोग जानते हैं कि वर्ष 2022 में भारत पार्लियामेंट ने पास किया जिसमें कि सिंगल यूज प्लास्टिक इज बैंड, तो वो एक सरकारी तरीके से जो एक नियम बना, वो एक बड़ा नियम है। नियम केवल काम नहीं करेगा, अकेला नियम, हम लोगों का जो बिहेवियरल चेंज है उसकी बहुत आवश्यकता है। तो उसके चलते हुए जैसे ये स्वच्छ सागर स्वच्छ सागर एक अभियान जब चलाया गया 2022 में, जैसे मैं बताया कि एक विशेष परिकल्पना के साथ में चलाया गया, उद्देश्य के साथ चलाया गया, ये उसके तुरंत बाद ही था। और इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि बिहेवियरल चेंज भी हो लोगों में, बजाय सिंगल यूज प्लास्टिक के हम लोग कपड़े के थैले का उपयोग करें। और मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें कि इसके तुरंत ही हमारा जो मंत्रालय है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, हम लोग हर वर्ष पृथ्वी दिवस का आयोजन करते हैं और सपोर्ट करते हैं। इस वर्ष भी लगभग जगह जगह पर ये किया गया 200 विद्यालयों में, और वहां पर हम लोगों ने इसको बढ़ावा दिया कि हम लोग पर्यावरण प्रकृति संरक्षण का ध्यान दें और हम लोग थैले का उपयोग करें, कपड़े के थैले का, बजाय प्लास्टिक जैसी चीजों के। तो ये एक बिहेवियरल चेंज की अवस्था। दूसरा जो सरकार ने कहा है, जो सरकार का जोर है कि रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज, तो एक परिवर्तन जो सुखद देखा जा रहा है कि ना केवल सरकारी संस्थाएं बल्कि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं इस पर काफी ध्यान देना शुरू किया उन्होंने, और लोगों में भी विशेषकर विद्यार्थियों में चेंज आया है कि वो प्लास्टिक के बजाय वो लोग बाकी, चाहे वो कपड़े के बैग हो या फिर जूट के थैले, उसका उपयोग काफी मात्रा में बढ़ाया धीरे धीरे।
1: क्योंकि आपने व्यवहारिक स्तर पर बदलाव की बात की है, जो कि समाज में बहुत ही निजी तौर पर शुरू हो सकता है कि हमारा व्यवहार किस तरीके से पर्यावरण के प्रति रहे। ऐसे में और इस बारे में जानकारी बढ़ाने के लिए, फैलाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए कि कितना महत्वपूर्ण है पर्यावरण संरक्षण एक मोटा माटी स्तर पर, क्योंकि यहां पर तो हम समुद्र की सफाई की बात करते हैं, समुद्र की सुरक्षा की बात करते हैं, भारत अपने आप में, भारत का जो तटीय खिंचाव है वो 11,098 किलोमीटर है, हम सब जानते हैं। तो तो उसे साफ करना, गंदा करना, फिर साफ करना, मतलब लगता है ये कितना लॉन्ग टास्क हो जाता है। तो पहले ही हम अपने आप को इस तरीके से बना करके रखें कि हम नहीं गंदगी फैलाएं। तो आपने जिस बिहेवियरल चेंज की बात की या निजी स्तर पर एक अप्रोच की बात की जो बदले, इसके लिए क्या कोई कैंपेन या किसी तरीके की जागरूकता इस संदर्भ में फैलाने की कोशिश की गई हो इस 4 साल के अंतराल में?
0: हाँ, ये अभी एक परिवर्तन बहुत बड़ा देखने में आ रहा है। आपने देखा होगा, स्वयं भी आपने नोटिस किया होगा कि जब से

0: ये स्वच्छता ही सेवा, तो जब से ये कैंपेन विशेषकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे जब किया ये, तो उसके बाद में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है समाज में कि लोग बाग सफाई के प्रति, वैसे तो हम लोग पहले भी जागरूक थे और भी ज्यादा जागरूक हुए हैं, सजग हो गए हैं, और विशेषकर कुछ चीजों के लिए जैसे कि प्लास्टिक का उपयोग करना, कुछ इधर उधर फेंकना, उस पे बहुत कमी आई है। अब बहुत सुधार है वो, और ये बात बहुत सुखद है कि हमारे यहाँ पर एक विशेष करके जो हम लोगों की एक पर पार्टी रही है, जो एक हम लोगों की प्राचीन काल की जो पद्धति रही है कि हम लोग हमेशा जो प्रकृति के लिए संरक्षण के लिए उसको पूजनीय मानते रहे हैं, और चाहे वो जल हो, तो हमने जल को पानी नहीं, हमने जल देवता ही कहा, वायु देवता, अग्नि देवता, समुद्र देवता। तो हम लोगों का एक जो सम्मान रहा है प्रकृति प्रति, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर बैठा हुआ है। और साथ में जो हमारे जो संविधान में जो अगर आप देखेंगे विशेष करके जो अनुबंध हैं कुछ, वो भी प्रकृति के संरक्षण और उचित उपयोग पर जोर देते हैं।
1: एक सप्ताह भर इस अभियान को मनाया जाएगा जो कि आज से शुरुआत है। कौन कौन सी ऐसी परियोजनाएं इस अभियान के अंतर्गत होंगी जो उत्साह वर्धन का काम करेंगी युवाओं में और जो वहां के रिहायशी जो लोग हैं उनके लिए?
0: इसमें देखिए पूरा एक हफ्ते का ये प्रोग्राम रखा गया। इसको माननीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के जो मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने 1 सितंबर को लॉन्च किया था डिजिटली। उसके बाद में 12 से 19 सितंबर तक का ये एक हफ्ते का प्रोग्राम है, क्योंकि 19 सितंबर को इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे भी है इस समय। एज आई टोल्ड यू, एक हफ्ते की जो गतिविधियां वो इस तरह की रही हैं हम लोगों की कि जिसमें कि सब लोग ठीक से जुड़ सकें। जैसे कि 12 तारीख को शुरुआत हुई, तो इनॉग्रल डे था वो, जहां पर ईस्ट कोस्ट में अगर हम देखें वेस्ट बंगाल के दीघा में, वहां पर एक्टिविटी हमारे यहाँ के संयुक्त सचिव वहां पर थे और डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट थे वहां पर, बाकी साइंटिस्ट और वहां के स्टूडेंट्स, दीघा बीच में 12 तारीख को। उसी समय अगर हम देखें वेस्ट कोस्ट पर, तो गुजरात यूनिवर्सिटी में लगभग 1000 स्टूडेंट्स और पार्टिसिपेंट्स थे, जो कि एक कॉन्फ्रेंस उन्होंने आयोजित की थी, कॉन्फ्रेंस ऑन कोस्टल इकोलॉजिकल सेफ्टी एंड सस्टेनेबिलिटी। तो उसमें इतना ये इम्पोर्टेंट विषय है कि वहां पर माननीय राज्य गृह मंत्री भी आए थे, माननीय नित्यानंद राय जी, उसमें माननीय जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के जो मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी भी, उन्होंने ऑनलाइन कनेक्ट किया था, और साथ में जो वैलिडिक्ट्री सेशन था उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉक्टर टी श्रीनिवास कुमार उसमें थे। उसी समय आपको बताना चाहूंगा कि हर एक कोस्टल स्टेट से उसमें सहभागिता थी, उसमें सभी लोग वहां मौजूद थे, और वहां पर एक प्लेज भी ली गई, एक शपथ ली गई, जो कि समुद्र के प्रति जागरूकता और रखरखाव और ध्यान के लिए थी। 12 के बाद में 13 तारीख को संडे ऑन साइकिल, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, उन्होंने संडे ऑन साइकिल प्रोग्राम स्वच्छता ही स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर के लिए उन्होंने लगभग 3000 से अधिक स्थानों पर किया। और इसके बाद में आपको बताना चाहूंगा कि 14 तारीख को भी मैराथन हुआ, 15 को भी एक्टिविटीज हैं, और अगर देखें 16 तारीख को ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो हमारे जो विभाग हैं जैसे भारत मौसम विज्ञान विभाग और बाकी विभाग, वो लोग पूरे देश में जगह जगह पर ओजोन दिवस मना रहे हैं। और इसके बाद में अगर हम देखेंगे 17 तारीख को एक प्लेज का सभी जगह, प्लेज और ह्यूमन चेन, जो कि समुद्र के प्रति अपनी जागरूकता और समुद्र का रखरखाव के लिए है।
1: जी, इतनी महत्वपूर्ण बातें आपने बताई समुद्र को लेकर के, उसके संरक्षण को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के। एक बहुत ही बड़ा अभिन्न अंग है ब्लू इकोनॉमी, जो बहुत सारे जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। एक साफ समुद्र मछुआरों, कोस्टल बिजनेस और लाखों तटीय परिवारों की जो रोजी रोटी है उसको बहुत ही महीन स्तर पर प्रभावित करता है। ऐसे में अगर हम इस अभियान की परिकल्पना को देखें और पिछले 4 साल में किए गए जो हमारे कर्म हैं इसके प्रति और जो हमारा डेडिकेशन, जो समर्पण रहा है, इस लिहाज से इसकी महत्ता कितनी बढ़ जाती है?
0: इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका बार बार उल्लेख किया है, ब्लू इकोनॉमी की जो इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जो समुद्र है वो हम लोगों को काफी उनकी जानकारी है नहीं, और जितना हमको मिल रहा है उतना ही हमको जानकारी नहीं है। आपको बताना चाहूंगा कि मोर देन 50% ऑक्सीजन हम लोगों को समुद्र से मिलती है, और सरकार का जो एक विजन है, जो सोच है, जिस तरह की अब लोग हम मिशन मोड में काम कर रहे हैं, तो एक परिकल्पना है 2035 तक हम लोग 7-8% जीडीपी का हिस्सा ब्लू इकोनॉमी के माध्यम से होगा। और यहां तक आप देखें कि वर्तमान में जो भी हम लोगों के प्रयास चल रहे हैं सरकार के, भारत सरकार के, लगभग 40 करोड़ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कारोबार से जुड़े हुए हैं उससे संबंधित, और प्रोपोर्शनेटली उम्मीद के आस्ती आप अंदाज लगा सकती हैं कि 2035 में निश्चित तौर पर एक उसमें बहुत अच्छा इजाफा होगा।
1: बहुत धन्यवाद डॉक्टर जगवीर सिंह जी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए और हमसे इतनी महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए।
0: धन्यवाद प्राची जी आपका भी और आकाशवाणी का बहुत बहुत धन्यवाद।

0: का। अभी आप सुन रहे थे स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर जगवीर सिंह और आकाशवाणी संवाददाता प्राची प्रिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप का नंबर है हमारा 9289094044।
1: मंथन।

0: সিসিপিএ। উপভোক্তা বিষয়ক মন্ত্রক জানিয়েছে, রাইড নিশ্চিত হওয়ার আগেই যাত্রীদের বাড়তি অর্থ প্রদানে প্ররোচিত করার ক্ষেত্রে অন্যান্য ব্যবসায়ে কার্যকলাপ সহ একাধিক কারণে এই জরিমানা। গ্রাহক বাড়তি অর্থ প্রদানে সম্মত না হলে রাইডটি হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার ভয় তৈরি হয়। দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে আজ দ্বিতীয় টি টোয়েন্টি ম্যাচে প্রথম ব্যাট করে আফগানিস্তান ভারতের সামনে 160 রানের লক্ষ্যমাত্রা রেখেছে। এদিন টসে জিতে প্রথমে আফগানিস্তানকে ব্যাট করতে পাঠায় ভারত। নির্ধারিত 20 ওভারে 8 উইকেট হারিয়ে 159 রান তোলে আফগানিস্তান। দলের অধিনায়ক ইব্রাহিম জাদরান সর্বোচ্চ 37 রান করেন। ভারতের হয়ে নীতিশ কুমার রেড্ডি 3 উইকেট এবং আর্শদীপ সিং 2 উইকেট নেন। একটি করে উইকেট নেন জসপ্রীত বুমরা, অক্ষর প্যাটেল ও রবি বিষ্ণু। শেষ পাওয়া খবরে ভারত 11 ওভারে 3 উইকেটে 126 রান করেছে। শেষ করার আগে খবরের বিশেষ কিছু অংশ আরেকবার। ব্যক্তিগত লেনদেনের ক্ষেত্রে ইউপিআই ব্যবহার করে টাকা পাঠানোর সময় কোনো মাশুল দিতে হবে না বলে কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রক স্পষ্ট করে দিয়েছে। ওমান উপকূলে বাণিজ্যিক জাহাজ এমটি গায়ের উপর হামলা কোনোভাবেই মেনে নেবে না ভারত, স্পষ্ট বার্তা দিল বিদেশ মন্ত্রক। খবর এখনকার মতো এখানেই শেষ হল। এর পরের সংবাদ আগামীকাল সকাল 6:20 গীতাঞ্জলি প্রচার তরঙ্গে।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সে বিশ্ব দর্পণ কে সাথ মে শক্তি প্রতাপ সিং। मुख्य समाचार। भारत ने कहा, चीन के साथ मुख्य चिंताओं को दूर करने में आपसी हित और संवेदनशीलता को मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। खाड़ी क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाने को भारत ने अस्वीकार्य बताया, साथ ही लाल सागर में बिगड़ती स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की। हौसी हमले की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की। अमरीकी अदालत ने विदेशी छात्रों और पत्रकारों के लिए ट्रंप प्रशासन के नए वीजा नियमों पर रोक लगाई। और अफगानिस्तान ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत को 160 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
2: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं।
2: 50 के लगभग आउटकम्स हैं अलग अलग क्षेत्रों में और ये सब विकास आधारित आउटकम्स हैं और इन सभी पे लोगों के लिए अवसर पैदा होंगे। जब अर्बन मोबिलिटी की बात कही है, वहाँ भी हमारे देश में कई एक और ब्रिक्स देश में ई मोबिलिटी पर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काफी काम हो रहा है। तो ब्रिक्स देश आपस में अपने अपने उनके जो उनका एक्सपीरियंस है उसको साझा कर सकते हैं और फिर ये एक प्रस्ताव है और इस प्रस्ताव पर लोगों को अब ध्यान देना है और उसको देखना है किस प्रकार से इसको आगे ले जाया जाए।
1: जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं।
2: हम लोगों ने कई दफा देखा है कि इस प्रकार का आंख में धूल झोंकने वाली हरकत पाकिस्तान करता रहा है। इससे एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर के नाम पे अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है, उनको एक्शन लेना चाहिए क्योंकि उनको खुद ही पता है कि लोग कहाँ हैं, उनको अरेस्ट करना चाहिए।
1: ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गैया पर हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, लोगों और असहन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत और रूस के बीच ऊर्जा सहयोग द्विपक्षीय साझेदारी को महत्वपूर्ण स्तंभ है। उन्होंने कहा कि दोनों देश परमाणु क्षेत्र में भी लंबे समय से सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत इस ऊर्जा सहयोग को रूस के साथ और आगे ले जाने का इच्छुक है। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन ने वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका की सराहना की है। श्री ग्रीन ने क्वाड संगठन की बढ़ती सक्रियता पर बल दिया। उन्होंने कृषि, प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच सहयोगों के अवसर पर जानकारी दी। श्री ग्रीन ने भारत के राजनयिक नेतृत्व, विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की भूमिका की प्रशंसा की। भारत और अमरीका के बीच 22वां

0: संयुक्त सैन्य अभ्यास समारोह आज उत्तराखंड में आयोजित किया गया। इस सैन्य अभ्यास उत्तराखंड के औली और राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में एक साथ आयोजित किया जा रहा है। अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं की संयुक्त सैन्य क्षमता बढ़ाना है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से सऊदी अरब और प्रमुख क्षेत्रीय समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नई चेतावनी, हमले और सैन्य झड़पों की खबरें लगातार मिल रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि सऊदी अरब में आज मक्का, जेद्दा और तैफ में बहुत कम समय के लिए आपातकालीन चेतावनी जारी की गई।
1: सऊदी अरब ने आज मक्का, जेद्दा और ताइफ के लिए बहुत थोड़ी देर के लिए इमरजेंसी अलर्ट जारी किए। ये अलर्ट संभावित हूदी हमलों को देखते हुए जारी किए गए थे। कुछ ही मिनटों बाद इन्हें हटा दिया गया और अधिकारियों ने कहा कि खतरा टल गया है। इससे पहले सऊदी अरब के प्रमुख रेड सी ऑयल पोर्ट यानबू के लिए भी अलर्ट जारी किया गया था, जिसे बाद में हटा लिया गया। सोमवार को खमेस मुशेत, अबा और ताइफ पर हूदी हमलों में 13 लोग घायल हुए और कई घरों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने इन हमलों का तोड़ जवाब देने की बात कही है। उधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सोमवार को एक और जहाज पर प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ। इस स्ट्रेटेजिक जलमार्ग से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों की संख्या सोमवार को घटकर सिर्फ 4 रह गई, जबकि एक दिन पहले यह संख्या 10 थी। दुबई से आकाशवाणी न्यूज के लिए मनीष शिवा।
0: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन द्वारा विदेशी छात्रों और पत्रकारों के रहने की अवधि पर लगाई सख्त सीमाओं के नियम पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि इस नीति को लागू करने से अमेरिका की अर्थव्यवस्था और उच्च शिक्षा प्रणाली को अधिक नुकसान हो सकता है। ट्रंप प्रशासन ने इस वर्ष जुलाई में इस नियम को अंतिम रूप दिया था। यमन के हौसी विद्रोहियों ने आज दावा किया कि सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों के तैंस प्रांत पर हमले में 3 लोग मारे गए हैं, जबकि मानवाधिकार निगरानी संस्था ह्यूमन राइट्स वॉच ने हौसी विद्रोहियों पर वाणिज्यिक जहाजों पर हमले का आरोप लगाया है। यमन में नए सिरे से शुरू हुई लड़ाई से आम नागरिकों की जान खतरे में है और लाल सागर से होकर गुजरने वाले जहाजों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। यमन में ईंधन की कमी और बढ़ते संघर्ष के कारण जिबूती में शरण लेने वाले लोगों की आवाजाही बाधित हुई है। संयुक्त राष्ट्र की प्रवासन एजेंसी ने बताया कि यमन के और अधिक नागरिक नौकाओं की जिबूती जाने को तैयार हैं। जिबूती में वर्तमान में यमन के 2000 से अधिक नागरिक शरण लिए हुए हैं। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि व्यक्तियों के बीच UPI से कितनी भी राशि के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। मंत्रालय ने कहा कि छोटे व्यापारियों के लिए 0 MDR रूपरेखा के अंतर्गत 2000 रुपये तक का लेन देन निःशुल्क रहेगा। इस प्रकार व्यक्तियों के व्यापारियों को लगभग 96% लेन देन अप्रभावित रहेंगे। MDR केवल 2000 रुपये से अधिक की विशिष्ट व्यापारी लेन देन पर ही लागू होगा। मंत्रालय ने कहा कि MDR ना तो कर है, ना ही सरकार या NPCI द्वारा वसूला जाने वाला प्रभार। NPCI ने कहा कि संशोधित UPI मर्चेंट डिस्काउंट रेट फ्रेमवर्क को चुनिंदा व्यापारिक लेन देन के लिए शुरू किया गया है। ये 15 अक्टूबर से लागू होगा। बांग्लादेश की प्रतिबंधित आवामी लीग ने 2024 के छात्र नेतृत्व वाले विद्रोह से जुड़े मानवता विरोधी अपराधों पर अपने 7 वरिष्ठ नेताओं की मौत की सजा के बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के फैसले को कड़ी आलोचना की है। आवामी लीग का कहना है कि न्यायिक प्रक्रिया को जल्दबाजी में पूरा किया गया, जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कानून के मूलभूत और सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त सिद्धांतों की अवहेलना है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के सूचना और प्रसारण सलाहकार डॉक्टर जाहिद उर रहमान ने आज कहा कि भारत में रह रहे भगोड़े और दोषी लोगों को सौंपना दोनों देशों के बीच रिश्ते आसान बनाने के लिए जरूरी शर्त है। मीडिया से बातचीत में सलाहकार ने कहा कि कोई भी आरोपी अदालत में पेश हो सकता है, क्योंकि ज्यू न्यायपालिका अब पूरी तरह आजादी से काम कर रही है। श्री रहमान ने कहा कि बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त के साथ बैठक के दौरान भी यह मुद्दा विशेष रूप से उठाया गया। दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में अफगानिस्तान ने भारत को 160 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारतीय टीम ने 14वें ओवर में 3 विकेट खोकर 142 रन बना लिए हैं। पहले मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया था। 3 मैचों की श्रृंखला में भारतीय टीम 1-0 से आगे है। श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मुकाबला बृहस्पतिवार को दिल्ली में ही खेला जाएगा। भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में आयोजित 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग ले रहा है जो 19 सितंबर तक चलेगा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश कर रहे हैं। सम्मेलन में भारत के राज्यों और केंद्र शासित

प्रदेशों के विधानसभाओं के 32 पीठासीन अधिकारी और 18 सचिव भी शामिल हैं जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सदस्य हैं। सचिवालय ने बताया कि श्री हरिवंश 69वीं संसदीय परिषद की महासभा को राष्ट्रमंडल के नए नेतृत्व के अवसर, लोकतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मजबूत करने के लिए संसदीय कार्रवाई विषय पर संबोधित करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा, चीन के साथ मुख्य चिंताओं को दूर करने में आपसी हित और संवेदनशीलता को मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। खाड़ी क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाने को भारत ने अस्वीकार्य बताया। साथ ही लाल सागर में बिगड़ती स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की। हौसी हमले की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की। अमरीकी अदालत ने विदेशी छात्रों और पत्रकारों के लिए ट्रंप प्रशासन के नए वीजा नियमों पर रोक लगाई। और अफगानिस्तान ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत को 160 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

When you see them, you will realize why I love my sweet love.

0: With that, we come to the end of tonight's Jazz Time. Dear listeners, please stand by for the news from Delhi in a short while from now.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज ये जानकारी दी।
2: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख पाकिस्तानी रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं। ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइला हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, लोगों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। हूती हमलों की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से सऊदी अरब और प्रमुख क्षेत्रीय समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नई चेतावनी, हमले और सैन्य झड़पों की खबरें लगातार मिल रही हैं। सऊदी अरब में आज मक्का, जेदा और तैफ में बहुत कम समय के लिए आपातकालीन चेतावनी जारी की गई। उधर यमन के हूती विद्रोहियों ने आज दावा किया कि सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों के तैज प्रांत पर हमले में 3 लोग मारे गए। यमन में नए सिरे से शुरू हुई लड़ाई से नागरिकों की जान खतरे में है और लाल सागर से होकर गुजरने वाले जहाजों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच UPI से कितनी भी राशि के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए 2000 रुपए तक का लेन देन निःशुल्क रहेगा। इस प्रकार व्यक्तियों से व्यापारियों को लगभग 96% लेन देन अप्रभावित रहेगा। 2000 रुपए से अधिक के व्यक्ति से व्यवसाय लेन देन पर 0.4% का मामूली MDR लगेगा, जबकि 75,000 रुपए और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए MDR की सीमा 300 रुपए प्रति लेन देन होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योग के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइलों से लेकर राडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।
3: आज 2026 में DRDO ने मिसाइल से लेकर राडार तक, कम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी कैपेबिलिटीज साबित की है। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए DRDO आज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इस सच्चाई को ही कोई नकार नहीं सकता।
1: भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में आयोजित 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग ले रहा है, जो 19 सितंबर तक चलेगा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश कर रहे हैं। सम्मेलन में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के 32 पीठासीन अधिकारी और 18 सचिव भी शामिल हैं, जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सदस्य हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज 17वीं सदी के कवि संत मकूल दास महाराज की स्मृति में भारत सरकार के डाक विभाग द्वारा जारी स्मारक डाक टिकट का विमोचन किया। श्री सिंधिया ने संत मलूकदास को आध्यात्मिक शक्ति का वाहक बताया और देश में मुश्किल दौर में भी सनातन धर्म की मूल भावना को बनाए रखने में उनके योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि आज भारत

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun!